nicely, Jay.

0: का स्वागत।
1: सक्सेस की बात की थी अभी मैंने थोड़ी देर पहले दोस्तों इट हैपेंस में, और उसके बाद मैंने खूबसूरत गाना भी सुना। सक्सेसफुल इंसान की बात करूं, अगर सक्सेस की बात तो कर ली, लेकिन सक्सेसफुल इंसान की बात करूं तो क्या लगता है आपको इस दुनिया में सक्सेसफुल पर्सन या इंसान आप किसे मानते हैं, कौन है? वो जो लाइफ में कभी गिरा नहीं, जिसने कभी फेलियर्स का सामना नहीं किया, जिसको डायरेक्ट कम उम्र में सक्सेस मिल गई, उसे कहेंगे आप सक्सेसफुल इंसान? भाई मैं तो ऐसा नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि वो इंसान लाइफ में सक्सेसफुल है जिसने फेलियर्स का सामना भी किया है और जो नीचे भी गिरा है, लेकिन जो गिर के उठना जानता है, गिर के गिरे रहना नहीं जानता, अपनी जिंदगी को कोसना नहीं जानता, भगवान को कोसना नहीं जानता, अपनी किस्मत को कोसना नहीं जानता, बल्कि उसे अपने प्लान्स, अपने गोल्स, अपने हार्डवर्क और अपने पैशन पर भरोसा है, वो है एक सक्सेसफुल इंसान। वे मेरे लिए तो ये डेफिनेशन है। आपकी डेफिनेशन क्या कहती है, एक सक्सेसफुल पर्सन कौन है, मुझे बताइए लीजिए ब्रिस्वानी के हमारे फेसबुक पेज पर। और चलिए आपके लिए प्ले करती हूँ अभी ये अगला ट्रैक, इसे इंजॉय कीजिए और मुझे बताइए जरूर कौन है सक्सेसफुल आपकी नजर में। Keep listening to Radio Brahmani.

0: दोस्तों, जिंदगी में हमें कई बार समझाने वाला नहीं, समझने वाला चाहिए होता है। हम चाहते हैं हमारे दिल में जो चल रहा है वो हम किसी से बांट सकें, लेकिन पता है हमारे आसपास के लोगों की आदत क्या होती है? इनफैक्ट किसी और की जिंदगी की बात हो तो हमारी भी आदत क्या होती है, हम उसे समझाने पहुंच जाते हैं। यार तुमने यहां पर गलती कर दी, यार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यार मुझे तो पता था मुझसे पूछ लेती तो लाइन ही खराब है। ऐसी बहुत सारी बातें उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उस पर थोपते हैं या लोग भी आप पर थोपते हैं जब आप जिंदगी के टफ टाइम से गुजर रहे होते हैं या जिंदगी में कुछ स्ट्रगल चल रहा होता है या कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है। देखिए, कहते हैं ना कि जिस पर पड़ती है वही समझ सकता है। वो बंदा जो है वो आपसे समझने नहीं बैठा है, वो ये चाहता है कि आप उसे समझें, आप कुछ देर उसके साथ बैठकर उसके दिल की बात सुने, उसके दिल में क्या है ये जाने, है ना? तो हमेशा समझाने मत पहुंच जाइए, कभी कभी समझने की भी कोशिश कीजिए। और सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 107.1 AM पर आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस।
1: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई नागे।

वेलकम बैक रेडियो प्रस्वानी पर, आप है सताक्षी के साथ और सताक्षी के साथ सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। भाई कहते हैं और ये सही भी है कि सबकी लाइफ में अच्छा और बुरा वक्त आता है। भाई इस दुनिया में कोई भी ऐसा तो नहीं है ना जिसकी लाइफ में सिर्फ अच्छा ही टाइम चलता रहे या सिर्फ बुरा ही वक्त रहे, ऐसा तो नहीं है। हम सबकी जिंदगी में अच्छा और बुरा दोनों वक्त आता है। अब क्योंकि जिंदगी में वक्त एक साइकिल है इसलिए ये चलता भी रहता है, यानी ना तो अच्छा वक्त बहुत दिन टिकता है और ना ही बुरा वक्त बहुत दिन टिकता है। तो अच्छा वक्त तो सबके लिए बढ़िया है, लेकिन जब हमारा बुरा वक्त हो, बुरा टाइम हो, तो चीजों को कभी कभी वैसे ही छोड़ दीजिए। अच्छे वक्त में तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है जिंदगी में, लेकिन बुरे वक्त में चीजें जरा गड़बड़ होती हैं। आप संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन आपसे हो नहीं रहा होता है, चीजें आपके हाथ से निकल रही होती हैं, कई मौके आपके हाथ से निकल रहे होते हैं और आप उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए, संभालने की कोशिश कीजिए, लेकिन जब आप ये रियलाइज कर लें कि भाई चीजें नहीं संभल रही हैं, तो उन्हें कुछ वक्त के लिए वैसे ही छोड़ दीजिए। हाँ, याद रखिए, विश्वास रखिए कि वक्त के साथ सब नॉर्मल हो जाएगा, बस आपको पेशेंस रखना है थोड़ा सा जब तक वक्त खराब है। ये साइकिल है, रुक कर नहीं रह सकता, अच्छा बुरा, बुरा अच्छा, यही साइकिल है, लाइफ साइकिल है। सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस। और चलिए, इतनी खूबसूरत सी बात है हमारे वक्त पर, तो वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं भाई और इस अगले ट्रैक को एंजॉय करते हैं। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्वानी।

रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। कई बारी आप जिंदगी में इस बात को सोचकर परेशान होते हैं ना कि यार मेरी वैल्यू नहीं है इस जॉब में, मेरी वैल्यू नहीं है, मेरा बॉस, मैं इतना हार्डवर्क करता हूँ या करती हूँ लेकिन मुझे वो पोजिशन नहीं देता, मुझे उस लायक नहीं समझता। वो तो समझता है कि मैं बुद्धू है ना, वो तो समझता है कि मेरे से काम बस ऐसे ही हो जाता है, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ लेकिन मैं उसे इम्प्रेस नहीं कर पाता हूँ। कई बार ऐसी बातें सोचते हैं ना। देखिए ऐसा है कि सही इंसान की वैल्यू जो है वो सही जगह पर ही होती है। और अगर आपको वाकई ये लग रहा है कि जिस जगह पर भी आज आप हैं वहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं है या कोई आपकी कद्र नहीं करता है या कोई आपको समझता नहीं है, तो बेटर है वक्त रहते उस जगह को चेंज कर दें। जी हाँ, आप समझ जाएं कि वो जगह आपके लिए है ही नहीं और अपने लिए इमीडिएटली कोई नई जगह ढूंढना शुरू कर दीजिए जहाँ आपकी वैल्यू हो, जहाँ लोग आपको समझें, राइट? क्योंकि अगर आप काम ही करते रहेंगे और कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा तो यार धक्का तो लगता है, बुरा तो लगता है, राइट? इसलिए आप कोशिश करें कि आप एक नई जॉब में स्विच कर लें या नए काम में स्विच कर लें, या आप अगर किसी के साथ दोस्ती में हैं तो आप है ना अपना रास्ता बदल लें, थोड़ा सा रिजर्व्ड हो जाएं। आप कैसे भी करके जहां पर जिस जगह पर जिस इंसान के साथ आपको लगता है कि आपकी वैल्यू नहीं है उस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है। सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस और चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी आपको सुनवाते हैं ये अगला ट्रैक।

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

भैया आई होप कि आप सबके पास एक बेहतरीन गाड़ी है। हाँ, मुझे पता है कि आप इतने पैशनेट हैं कि जिंदगी में गाड़ी तो ले ही चुके हैं, है ना। मतलब अब तो अब आपके लिए छोटी मोटी चीज़ हो गई। तो भाई, अगर गाड़ी है तो आप एक बात से तो ज़रूर अग्री करेंगे कि गाड़ी में वाइपर्स हैं आपकी। अब उन वाइपर्स का काम क्या है? जाहिर सी बात है, आपके फ्रंट मिरर पे, आपकी गाड़ी के शीशे पे जो धूल मिट्टी है उसे हटाना, और बारिश हो रही है तो बारिश के पानी को हटाना, ताकि आपको आगे का रास्ता क्लियर दिखाई दे सके। ऐसा ही होता है ना? हाँ, ऐसे ही हमारे और आपके लाइफ में कुछ लोग भी होते हैं जो हमें ज़िंदगी की क्लियरिटी दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं। और एक टाइम के बाद ऐसा भी होता है कि उनमें से कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं ऑटोमेटिक, और हमें लगता है कि यार ये बंदा जो है, क्या मुझे सिर्फ सही रास्ता दिखाने आया था? जी हाँ, बिल्कुल, वो बंदा जो है वो आपको सिर्फ सही रास्ता दिखाने, आपको लाइफ की क्लियरिटी दिखाने, या कभी कभी लोगों का सच दिखाने के लिए आपके साथ जुड़ता है। ऐसे लोगों को अगर आप जानते हैं, आप समझते हैं कि वो आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको लाइफ का वे, लाइफ का रास्ता, सही रास्ता दिखा रहे हैं, आपके रास्ते से कंकड़ पत्थर हटा रहे हैं, तो उनकी वैल्यू कीजिए, उन्हें समझिए। अदरवाइज अगर आज आप उन्हें नहीं समझेंगे तो आप अपनी ही लाइफ के साथ बहुत बड़ा धोखा करेंगे। क्या समझे, उन्हें जरूर समझिए। और चलिए, ऐसे ही हमारी जिंदगी के लोगों के नाम एंजॉय करते हैं अभी अगला ट्रैक। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो, इट हैपेंस।

वेल फ्रेंड्स, ये था आज का इट हैपेंस का सफर। आई होप कि आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। आज मैंने बहुत ही खूबसूरत गानों को आज की मॉर्निंग के लिए सेलेक्ट किया था। कैसे लगे आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज की बातें जो हैं वो बस दिल किया कि आपके स्ट्रगल पर, आपके एम पर, आपके गोल पर आज की बातें की जाएं, तो सारी की सारी बातें बस वही चुनी मैंने। कैसी लगी वो भी मुझे बताइएगा। लेकिन आप बताएंगे कहाँ? हमारे रेडियो प्रसवानी के फेसबुक पेज से जुड़िए, जहाँ आप हमें बता सकते हैं कि आपको इट हैपेंस कैसा लग रहा है। राइट, सो चलिए अभी मुझे इजाजत दीजिए। इस वादे के साथ जा रही हूँ कि बहुत ही जल्द मिलूंगी आपसे। इनफैक्ट कल सुबह मिलें क्या? तो चलिए, आपकी ख्वाहिश सर आंखों पे, कल सुबह एक बार फिर से करते हैं आपसे मुलाकात रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर, आप ही के ब्रेकफास्ट इट हैपेंस में। और जब तक मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक यूं ही हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। हैव अ ग्रेट डे।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

जी मैं संदेश अलग शर्मा तुम सुन रहे हो रेडियो दसवाणी वलसन ओ आर एम ते जिहड़ा हो चुका है हुण तक दी खबरां दा तां फिर करते हैं शुरुआत। सब तो पहला रुख करते पंजाब के वल जिथे जलंधर विच भाजपा आगू नूं गोली मार दित्ती गई। इतने वह दोवें धिरां विचाले समझौता कराने लिए आए सन। विवाद नूं सुलझाउण लई पंचायत बुलाई गई सी। इस दौरान एक धिर ने सब के सामने फायरिंग कर दी। इस घटना विच भाजपा आगू मोरूपुरी समेत दो व्यक्ति जख्मी हो गए। दोवां नूं तुरंत निजी अस्पताल विच दाखिल करवाया गया। उधर दूजे पासे देश की सब तो वड़ी मैडिकल दाखला प्रक्रिया नीट यूजी 2026 आखिरकार रद्द कर दी गई है। 3 मई नूं 12.79 लाख विद्यार्थियों ने कड़ी सुरक्षा विच प्रीख्या दी सी, पर हुण जांच एजेंसियां दे रडार ते कथित गैस पेपर आ गया है, जिसने पूरे सिस्टम ते सवाल खड़े कर दिते हैं। राजस्थान दे चुरू तो शुरू होया है गैस पेपर कोचिंग नेटवर्क ते वट्सएप ग्रुपां राही विद्यार्थियों तक पहुंचा ते हुण एही देश दी सब तो वड्डी प्रवेश परीक्षा रद्द होने दी वड्डी वजह बन गया। राजस्थान पुलिस दी कारवाई ग्रुप मुताबिक ए हाथ नाल लिखिया दस्तावेज सी, जिस विच करीब 410 सवाल शामिल सन। जांच विच सामने आया है कि जिन्हां विच लगभग 120 सवाल सीधे नीट यूजी 2026 दे असली पेपर विच आए सन। एसओजी दे एडिशनल डायरेक्टर जनरल विशाल बांसल ने दस्सिया कि इह गैस पेपर परीक्षा तो काफी पहला ही विद्यार्थियों विच घूम रहा सी। जांच एजेंसियों के मुताबिक बायोलॉजी और कैमिस्ट्री के 100 तो वध सवालों विच हैरान करन वाली समानता से। अधिकारियों का कहना है कि इस कारण 720 विचों करीब 600 अंक प्रभावित हो सकते हैं। जांच विच सामने आया कि गैस पेपर एक एमबीबीएस विद्यार्थी ने तैयार किया जो केरल के एक मैडिकल कॉलेज विच पढ़ता है ते मूल रूप नाल चुरू दा रहण वाला है। आरोप है कि उसने 1 मई नूं यह दस्तावेज सीकर विच अपने जानकार नूं भेजिया सी। इस तों बाद एक कोचिंग नैटवर्क अते वट्सएप ग्रुपां राही तेजी नाल फैल गया। जांच एजेंसियां नूं चैट रिकॉर्ड विच फॉरवर्डड मैनी टाइम्स वी टैग मिलिया है। उधर दूजे पासे कैनेडा दे विनीपेग शहर विच एक सिख नौजवान पुलिस भर्ती प्रक्रिया विच बैठण तो रोक दिता गया है। प्रीख्या केन्द्र दे अधिकारियों ने उसनु किरपान उतार के अंदर आउण लई कहा, पर नौजवान ने किरपान उतारन तो इनकार कर दिता। इस तों बाद उसनु एग्जाम हॉल विच दाखिल नहीं होण दिता गया ते ओह बिना पेपर दिते ही वापस आ गया। पंजाबी नौजवान जसपाल सिंह गिल दा कहना है कि किरपान उस दी आस्था ते धर्म दा प्रतीक है। उसने दस्सिया कि पुलिस अधिकारी ने प्रीख्या हॉल विच दाखला देण लई किरपान उतारन लई दी शर्त रखी थी, इसी जिस नूं उसने मनन तो इनकार कर दिता इस तों बाद उसनु एग्जाम हॉल विच दाखिल नहीं होण दिता गया ते ओह बिना पेपर दिते ही वापस आ गया। पंजाबी नौजवान जसपाल सिंह गिल दा कहना है कि किरपान उस दी आस्था ते धर्म दा प्रतीक है। उसने दस्सिया कि पुलिस अधिकारी ने प्रीख्या हॉल विच दाखला देण लई किरपान उतारन लई दी शर्त रखी थी, इसी जिस नूं उसने मनन तो इनकार कर दिता। हुण जसपाल सिंह इस मामले की शिकायत

उधर पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा नु हाई कोर्ट तो वड्डा झटका लग्या है। ईडी वालों गिरफ्तार किए गए संजीव अरोड़ा ने अपनी गिरफ्तारी ते रिमांड नु चुनौती दिंदिया पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट विच पटीशन दायर की थी। इस मामले ते सुनवाई हुई पर अदालत वालों फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। हुण इस मामले की अगली सुनवाई 13 मई नु होवेगी। ईडी ने संजीव अरोड़ा के चंडीगढ़ स्थित सरकारी निवास से छापा मारिया, जिस तों बाद शाम नु उन्हां नु गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी तों बाद उन्हां देर रात गुरुग्राम की एक विशेष पीएम एलए मनी लॉन्डरिंग रोकथाम एक्ट अदालत विच पेश किया गया, जिथे ईडी दीआं दलीलां सुनन तों बाद अदालत ने अरोड़ा नूं 7 दिनां दे रिमांड ते भेज दिता जो 16 मई तक लागू रहेगा। उधर भारतीय सीबीआई वालों पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों नाल जुड़े 20 लाख रुपए की रिश्वतखोरी के मामले में वड्डी कार्रवाई करते 3 मुलजमान नूं गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई दौरान विजिलेंस चीफ दा रीटर मौके तो फरार होने विच कामयाब हो गया, जिसकी भाल जारी है। इस बारे सीबीआई वालों जारी किए गए प्रेस नोट मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी ने पंजाब स्टेट टैक्स अफसर की शिकायत से कार्रवाई करदिआं एक वड्डी रिश्वतखोरी के नैटवर्क का पर्दाफाश किया। शिकायतकर्ता ने इल्जाम लगाया है कि उस विरुद्ध पंजाब विजिलेंस ब्यूरो लंबित एक शिकायत नू खत्म करन दे बदले विकास गोयल उर्फ विकी अते उसके पुत्र राघव गोयल वालों 20 लाख रुपए की रिश्वत मंगी गई सी। दोवें मुलजम डिज विजिलेंस दे रीटर पीओ राणा लई विचोले दा काम कर रहे सन। सीबीआई ने जांच दौरान रिश्वत की मांग की पुष्टि होने तो बाद सौदा 20 लाख तो घटा के 13 लाख रुपए नकद ते ओपी राणा लई एक सैमसंग गैलेक्सी जैड फोल्ड 7 मोबाइल फोन विच तय होया सी। 11 मई 2026 चंडीगढ़ विखे लगाए ट्रैप दौरान मुलजमा ने दे साथी अंकित वधवा नू 13 लाख रुपए ते मोबाइल फोन लैंदे हुए रंगे हत्थे काबू किया गया। इस दौरान राघव गोयल विकास गोयल ते सरकारी मुलाजम ओपी राणा अपने गनमैन वालों अलर्ट किए जाण ते मौके ते फरार हो गया। सीबीआई की टीम ने पिछा करके पंजाब हरियाणा सरहद तो राघव गोयल विकास गोयल ते दो गनमैना नू काबू कर लिया है, जदों के रीटर ओपी राणा हाले फरार है। प्रेस नोट विच सीबीआई ने दस्सिया कि सीबीआई वालों मुलजमान मलोट और चंडीगढ़ स्थित टिकाणे ते कीती गई छापेमारी दौरान 9 लाख रुपए की नकदी ते कई त्रासयोग दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच विच यह भी सामने आया है कि प्राइवेट व्यक्तियों को पंजाब पुलिस से AK-47 राइफलों वाले गनमैन मौजूद सन, जिस दिवती भूमिका आदि भी जांच की जा रही। गिरफ्तार किए गए मुलजमान चंडीगढ़ की विशेष अदालत विच पेश किया जाएगा। सीबीआई वालों इस मामले विच होर अधिकारियों की शमूलियत होने की भी डूंघाई नाल पड़ताल की जा रही है। तो हूं तक दम खबर बस इन ही खबर की वधेरे जानकारी तो सुझाव देने लिए सा जुड़ सकते हो, संपर्क कर सकते हो, तो सू ईमेल भी कर सकते हो। साड़ी ईमेल आईडी है brisoni@brisoni.com। इस ही फेसबुक पेज के जरिए जुड़ सकते हो। साड़ा फेसबुक पेज है रेडियो Brisoni 1701 एम। फिर हाजिर होंगे ताजा तरीन खबर लेकर तकली दे इजाजत। सत श्री अकाल।

0: ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Mera naam Dr. Kumar hai. Aur yahan kuch aisa hai, जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल।

0: तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
0: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
0: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
0: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 101 एम ते जी आप चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो भारतीय सिनेमा सिर्फ बॉलीवुड की चकाचौंध तक सीमित नहीं रहा। पिछले कुछ साल खेतरी भाषावां विच बनिया कई फिल्मां ने अंतरराष्ट्रीय मंचां ते भारत का नाम रोशन किया है। BFTA कांस वेनिस ते ऑस्कर वर्गे बहुत सारे अवार्ड फंक्शन विच भारतीय फिल्मां ने अपनी स्टोरी टैलिंग ते संवेदनशीलता नाल दुनिया नूं प्रभावित किया है। तो मैं सोचा कि क्यों ना तुहानूं उन्हां फिल्मां बारे दसा जिन्होंने विदेश विच वाही वटोरी हैगी है। शायद बहुत बारे तो थोनू पता होना बहुत बारे नहीं पता होना क्योंकि अदर लैंग्वेज है तो अदर लैंग्वेज जी आती हैगी है तो उस बारे सानू शॉर्ट मूवीज बारे ज्यादा पता नहीं हुंदा। तो चल मैं तुहानू दसदी हां ते जे थोनू समझ आती हुई तो जरूर देखियो क्योंकि फिल्म बहुत ज्यादा वधिया है।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

जी जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101 एम ते जी आर जे संदेश अलग दिन बने हुए हूँ। इन्होंने फिल्मों के जड़िया पूरी दुनिया के छाइया हुई ने तो जी लिस्ट मैं फरोल रही हूँ तो इस सब तो पहला नाम जो आता है वह हैगा बूंग। जी हाँ, ये लक्ष्मी प्रिया देवी के निर्देशन बनी मणिपुरी फिल्म हैगी है बूंग है फिल्म का नाम। तो बूंग ने ना हाल ही बाफ्टा अवार्ड 2026 बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीत के ना इतिहास रच दिता है। फरहान अख्तर रितेश सिद्धवानी दे एक्सल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस इस फिल्म एक छोटे मुंडे की कहानी है जो अपने पिता की तलाश विच निकलता। फिल्म मणिपुर जाति तनाव ते सीमा दीआं चुनौतियां नूं एक बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाउंदी हैगी है जो बहुत वधिया लगती है क्योंकि जेड़ी चीज बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाई जांदी है कि ना वो नो डाउट कमाल दी हुंदी है।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशन। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशन एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशन ऑन 3391-0622 और विजिट दियर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolar.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: हाँ जी, तो वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 107.1 FM ते जी आरजे संदेश अलग दिन नाल तुसीं बने होए। अगला नाम इस लिस्ट विच जिहड़ा हैगा ओह हैगा जी होमबॉर्न दा। नीरज गायवान वालों निर्देशित फिल्म ईशान खट्टर विशाल जेठवा जानवी कपूर दी हैगी है। तीनों इस लीड फिल्म दे विच लीड रोल दे विच ते मार्टिन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है ने इस दे। ए ना बचपन दे दो दोस्तां जिन्हां दे विचों एक मुस्लिम हैगा ते एक दलित समुदाय दे नाल हैगा है, तां उन्हां दी दोस्ती साहत ते जाति राजनीति दी कहानी हैगी है। ए भारत दी अधिकारित एंट्री सीगी 88वें ऑस्कर दे लई बेस्ट इंटरनेशनल फीचर दे विच। शॉर्टलिस्ट हुई पर नॉमीनेशन नहीं मिलिया। ए धर्मा प्रोडक्शन वालों बनाई गई है, 26 सितंबर नू रिलीज हुई सी।
1: Show mercy on it.

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Mera naam Dr. Kumar hai. Aur yahan kuch aisa hai जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। ब्रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सरवाने एम ते जी आर चे संदेश चौलक दिना से बने हुए हो। अगली फिल्म थोड़ी जी पिछे जाने हैं 2015 दे विच। वो फिल्म का नाम हैगा मसान। नीरज गायवान दी जैप्यू फिल्म वाराणसी विच दो कहानियां देवी जिस जो रिचा चड्ढा बने से ते दीपक जो विकी कौशल बने से दी सामाजिक दबाव ते मुक्ति दी खोज ये है की है। 2015 दे कांस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते जिस विच FIPRESCI अवार्ड अते प्रोमिसिंग फ्यूचर प्राइज सीगा। वाराणसी दी उथे जमीन ते बनी इस फिल्म विच रिचा चड्ढा ते विकी कौशल ने यादगार एक्टिंग की थी है। विकी कौशल दी किस्मत इस फिल्म दे नाल चमकी सी।

ग्रांड ज्यूरी प्राइज समेत 17 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं कि नहीं। इस नू 2023 ऑस्कर विच बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर नॉमिनेशन मिला है।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट

हाँ जी देख फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी वन सर वन एम ते जी आर छे संदेश अलग दिन आल से बने हुए हो। इस तो बाद अगला जिड़ा नाम है इस लिस्ट विच ओ है जी कोर्ट स्टे कोर्ट स्टेट वर्सेस अनुबा जी कोर्ट ते चैतन्य तामने दी ए एक होर फिल्म कोर्ट ने 2024 दे वेनिस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते सी लायन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड ते ओरिजोंटी कैटेगरी विच बेस्ट फिल्म। ए फिल्म भारतीय कानून व्यवस्था विच विसंगतियां नु करारा व्यंग हैगा उसते जिस विच एक लोक गायक ते आत्महत्या दे लई उकसाउण दा आरोप लग्या हैगा। इस दे नाल ही एक होर फिल्म बारे दसनी है वह हैगी है जी पर्च्ड। लीना यादव वालों निर्देशित पर्च्ड पेंटू भारत विच महिलावां दे दमन उते उसके प्रतिरोध की कहानी हैगी है। इस फिल्म ने दुनिया भर विच इस नूं बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म ने 18 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैगे ने। तनिष्ठा चटर्जी राधिका आपटे ते सुरविन चावला इस फिल्म दे विच लीड रोल दे विच है ने। फिल्म ने पेंडू भारत दी उन महिलावां दी कहानी बयां कीती है जो पितृ सत्ता नाल लड़दे आजादी दी राह तलाशदियां हैगियां ने।

0: Jati.
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: Mera naam Dr. Kumar hai. Aur yahan kuch aisa hai, जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

जी देखो, वेला तो हो चुकिया है थोड़े तो इजाजत लेने का, पर जाने तो पहला थोड़ू कुछ एक होर फिल्म बारे दसना जरूरी सी, मैं सोचा वह भी दस ही दिनी है। तो उस फिल्म का नाम है जी डिसिप्लिन जी है, चैतन्य वालों निर्देशित मराठी फिल्म हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आधारित है। की है फिल्म नू वेनिस फिल्म फेस्टिवल विच एफ आई PRESCI अवार्ड मिले हैगा, ते अल्फोंसो कुआरोन हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक इस दे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से। फिल्म एक संगीत साधक की कलात्मक पूर्णता की तलाश से आधुनिक दुनिया नाल टकरा की कहानी है। बहुत ज्यादा सोहनी है कि यह फिल्म तुसी जरूर देखियो। बाकी मिलते तो असं रहने हों, जुड़ते जरूर आ करो तुम साढ़े रेडियो बरसवानी 107.1 FM साथ फेसबुक पेज है जी, बरसवानी @bersawani.com साथ ईमेल आईडी है जरिए जेड़ा भी तुम अपना चाहते हो अपना लो, पर सा गलबात जरूर करो है ना। ते बाकी मैं तो यही कहना है कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखा करो। सत श्री अकाल।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
11: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ. हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड.
10: ऐसा क्या खास है वहाँ?
11: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया. ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं. साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए.
10: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
11: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999. ओपन 7 डेज. फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au. 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक. फोन नंबर 3804-3818. दैट्स 3804-3818.

0: May I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: चालाकी से जो पर सोकर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए।
1: ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

फाड़ कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 04209331 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा।
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
5: अर्न मनी फ्रॉम योर एम्प्टी ड्रिंक कंटेनर्स विद कंटेनर्स फॉर चेंज। योर एम्प्टी एलिजिबल कैंस, बॉटल्स एंड कार्टन्स रिसीव अ 10 सेंट्स रिफंड ईच। वी कॉल इट बिन कॉइन। सेव, स्पेंड और डोनेट योर बिन कॉइन टू अ कॉज यू सपोर्ट। देयर्स अ कंटेनर्स फॉर चेंज नियर यू। Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
6: Hi, this is Amitabh Bachchan.
7: And you are listening to Radio Brizwani.
8: Hi guys, I'm
7: Manmeet,
8: one of the Meat Brothers. And you are listening to Radio Brizwani.
9: Hi, this is Salman Khan. And
10: you are listening to Radio Brizwani.
11: Hi, this is Deepika Padukone. And you are listening to Radio Brizwani.
12: To everyone tuning into Radio Brizwani, this is Alia.
13: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं
14: रेडियो ब्रिस्वानी से। शाहरुख खान,
15: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
16: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
17: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
16: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की इंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
17: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
16: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उत्ते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नज़दीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार?

0: यार आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
1: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associate
2: handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa ते लॉ दी एंट्री केसेस नू हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस। ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ।

0: ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में. फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद. कॉल नाउ ऑन 04111270355. रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर. फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003.
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
3: तो उमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
2: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा.
3: बिल्कुल खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 04706318 प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
4: ओमसॉक केयरिंग विद डिग्निटी.
5: अर्न मनी फ्रॉम योर एम्प्टी ड्रिंक कंटेनर्स विद कंटेनर्स फॉर चेंज. योर एम्प्टी एलिजिबल कैंस बॉटल्स एंड कार्टन्स रिसीव अ 10 सेंट्स रिफंड ईच. वी कॉल इट बिन कॉइन. सेव स्पेंड और डोनेट योर बिन कॉइन टू अ कॉज यू सपोर्ट. देयर इज अ कंटेनर्स फॉर चेंज नियर यू. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
6: Hi, this is Amitabh Bachchan.
7: And you are listening to Radio Briswani.
8: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. And you are listening to Radio Briswani.
9: Hi, this is Salman Khan. And you are listening to Radio Briswani.
10: Hi, this is Deepika Padukone. And you are listening to Radio Briswani.
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
12: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani.
13: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
14: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

सब सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे अनियार श्रीनिव्या के साथ। और आप सब कैसे हो, कैसा फील कर रहे हो? वेडनेसडे का दिन है दोस्तों। मैं एक चीज आपको कहना चाहती हूँ, दुनिया में ना बहुत कुछ, लेकिन ये हमें पहली बात ये कि हमें पॉजिटिव रहना है, दूसरी बात ये कि हमें काइंड बनना है, तीसरी बात ये कि हमें अपनी केयर करनी है। जी हाँ, मतलब हमने अपनी जिंदगी को शायद दो या तीन नजरियों से देखा होगा हमेशा। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो जरूर। सबसे पहले कैटेगरी होती है जो बहुत कुछ करते हैं लेकिन वो सिर्फ अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। जब भी उन्हें किसी की हेल्प करने का मौका मिले तो वो नहीं करते, उन्हें लगता है कि क्या ही सच में क्या ही हो जाएगा अगर आप किसी की हेल्प नहीं करोगे। बट अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो क्या हो जाएगा, वो सोचिए। दूसरे, जी हाँ, जिनको लगता है कि सबके लिए सब कुछ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उन्हें लगता है कि अगर तो अच्छे वो नहीं लगेंगे, उनको अच्छा खुद को भी फील नहीं होता है ना। वो जो लोग है ना वो सेक्रीफाइजल वाली सिचुएशन में आते हैं, मतलब उनको अपना खुशियां सेक्रीफाइस करना पसंद है और वो दूसरों की खुशी कैटर करते रहते हैं। तीसरी, जिनको ना अपनी खुशी से मतलब है ना दूसरों की खुशी से मतलब है, उनको धूम धड़ाका मचाना है, मतलब वो जो तीसरी कैटेगरी है वो खतरनाक वाली होती है। सो मैं इतना कहूंगी कि काइंड बनिए, अच्छे बनिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, बिकॉज इस दुनिया में नेगेटिविटी बहुत है और उस नेगेटिविटी को कोप अप करने के लिए अच्छा बनना होगा। अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तो वो पॉजिटिविटी जो है वो हमारे अंदर रहेगी हमेशा के लिए, और वो उस इंसान के अंदर भी रहेगी हमेशा के लिए जिसकी हमने हेल्प की होगी। सो या काइंड बनिए, अच्छा बनिए, और जितना ये संसार गड़बड़ होता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप ऐसे कुछ सहते रहिए, कोई आपके साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है, गलत कर रहा है, बट ट्राई कीजिए कि आप ऐसे उस चीज को लें ताकि वो इंसान अपना सबक भी समझे लेकिन प्यार समझे। और यहाँ पर यही मैं आपको बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हम आए दिन बहुत कुछ पढ़ते हैं, आए दिन बहुत कुछ सुन रहे हैं दुनिया में लोग क्या क्या नहीं हो रही है कुछ कुछ जगहों पर। और एक और चीज जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो ये है कि हमेशा अपनी जिंदगी के हर पल को सेलिब्रेट कीजिए। जब सुबह उठते हैं तो भगवान को थैंक यू कीजिए, अल्लाह को थैंक यू कीजिए, रब को शुक्रिया, मतलब जिसको भी आप मानते हो उनको शुक्रिया अदा कीजिए, यूनिवर्स को। अगर आप नहीं मानते किसी भी भगवान, अल्लाह, रब या किसी में, तो अपने यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ ग्रांट किया है, सो उसको धन्यवाद, ग्रेटफुल फील कीजिए, क्योंकि ग्रेटफुल फील करना ही रास्ता है हर एक चीज को पाने का। जी हाँ, सो या इसी के साथ यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिचुअल है जो हमें प्रैक्टिस करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। क्या बात है, क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, और ये सच में आपको अच्छा फील करवाता है। ट्राई कीजिए, कुछ भी चीज शुरू करनी है तो ट्राई कीजिए। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर अब जो पहला गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो है आज के मौसम को डेडिकेट किया हुआ। जी हाँ, आज का मौसम जो है वो यही कह रहा है कि भीगा भीगा है सब कुछ, और अगर भीगा भीगा है सब कुछ तो यहाँ पर साड़ी कैसे नहीं भीगेगी, क्योंकि पहला गाना है भीगी साड़ी आप सबके लिए।

बात करते हैं आज के मैक्सिमम टेम्परेचर जो कि 24 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा, लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो 19.5 डिग्री हो रही है और कैसे ये फीलिंग जो है वो बढ़ती ही जा रही है। सो इसी के साथ अगर बात की जाए रात के टेम्परेचर की तो 17 डिग्री सेल्सियस तक रात को तापमान में गिरावट आप देख पाएंगे। और इसी के साथ अगर एयर क्वालिटी की बात की जाए तो एयर क्वालिटी है एकदम एक्सीलेंट। जी हाँ, एक्सीलेंट होने के साथ चांसेस ऑफ रेन 80%, जैसे मैंने कहा था कि बारिश थोड़ी होगी, थोड़ी ज्यादा होगी, रुक रुक के होगी, पर होगी जरूर। आप का क्या हाल है, क्योंकि आज तो बारिश है ही लेकिन कल भी पूरी तरह बारिश है, उसके बाद फ्राइडे को भी बारिश है, सैटरडे को भी माय गॉड मैं सिर्फ और सिर्फ बारिश देख पा रही हूँ। हाँ, थोड़ी कम हो सकती है किसी दिन, लेकिन किसी दिन थोड़ी ज्यादा हो सकती है, पर बारिश मैं जरूर देख पा रही हूँ, एटलीस्ट अगले दो दिन तक तो डेफिनेटली होने वाली है। सो इसी के साथ वही बात जो मैं हमेशा करती हूँ कि इम्पॉर्टेंट है बारिश में, अपना ख्याल रखना बारिश से बचने के लिए, छाता, जो जितनी भी चीजें होती हैं जो आपको बारिश से बचा सकती हैं वो आप अपने साथ रखिए। ट्रैफिक वाले इलाकों से बचने की कोशिश कीजिए, पूरी तरह से चेक करके चलिएगा कि कौन सी जगह पे ट्रैफिक हो सकता है, क्योंकि आपको पता है बारिश आती है वो इन्वाइट करती है अपने साथ बारिश को, ट्रैफिक को भी। सो ऑफकोर्स उस जगह से बचिएगा, और बारिश है तो बारिश को एंजॉय कीजिए, मतलब अगर आपको जरूरी नहीं है बाहर जाना तो मत जाइए, मजे से घर पे एंजॉय कीजिए खूबसूरत बारिश जब गिरती है तो। अगेन एक बहुत ही प्यारा सा नजारा आपको देखने को मिलता है, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करने को मिलती है, जैसे मैं कहती हूँ कि बारिश में सोने में मजा आता है, रीड करने में मजा आता है, कुछ अच्छा सा सुनने में मजा आता है, कुछ अच्छा सा खाने में मजा आता है। सो आप मुझे बताइए आपको एग्जैक्टली किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आता है, व्हाट डू यू फील मोस्ट And it's rains. So, yeah, इसी के साथ कल की अगर बात की जाए तो 24 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम टेम्परेचर रह सकता है और फ्राइडे को भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन बारिश दोनों दिन मुझे नजर आ रही है, कल खासकर और भी ज्यादा। सो या बारिश क्या लेकर आई है आपके लिए आप मुझे बताइएगा, और क्या आपको बारिश अच्छी लगती है तो भी हमें जरूर बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा आपकी फरमाइशों की तरफ, क्योंकि अभी प्रोग्राम की स्टार्टिंग है। कुछ इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बात करना पहले ही जरूरी है, क्योंकि तभी तो आप सबका साथ हमें यहाँ पर मिलेगा। जी हाँ, और हम सबके आप सबके साथ के साथ मेरा मतलब है कि आपकी फरमाइशों का साथ और आपका पार्टिसिपेशन। अगर आप लोगों को भी हमारे इस प्रोग्राम में कोई अच्छा सा गाना, कोई बेहतरीन सा, कोई मजेदार सा गाना फरमाइश करना चाहते हो आप, तो आपको एक नंबर डायल करना है और उस नंबर के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज के थ्रू आप अपनी फरमाइशों तक को अपने फेवरेट सॉन्ग्स को हम तक पहुंचा सकते हो। नंबर क्या है? नंबर है +9182887701। आई रिपीट, +9182887701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप हमें भेज रहे हैं अपनी फरमाइश, हमारी तरफ से एक और बहुत ही मजेदार सा गाना आप सबके लिए।

the legends and we out. जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ एक बहुत ही प्रेस्टीजियस फिल्म फेस्टिवल जो है वो शुरू हो चुका है और वहां से खबरें आनी शुरू हो गई हैं। जी हाँ, आप लोगों को लग ही गया होगा पता मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। वेल मई में दो चीजें बहुत ज्यादा मेन होती है, एक होता है मेट गाला और दूसरा होता है कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि होता है फ्रेंच रिवेरिया के साथ। जी हाँ, वहां पर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, मतलब दुनिया भर से सेलिब्रिटीज पहुंचते हैं, दुनिया भर से जो बहुत ही खतरनाक लेजेंडरी मूवीज होती हैं उनको वहां पर दिखाया जाता है, उनकी कास्ट को बुलाया जाता है, उनको ऑनर किया जाता है और फैशन की ए गेम रेड कार्पेट पर नजर आती है। पर ऑफ कोर्स फिल्म फेस्टिवल जो है वो ऑफ कोर्स फिल्म्स को सेलिब्रेट करने के लिए है, लेकिन ओवर द इयर्स कांस फिल्म फेस्टिवल सिर्फ फिल्म्स को सेलिब्रेट करने की जगह नहीं रह गया बल्कि फैशन को सर्व करने की जगह भी बन गया। एंड आलिया भट्ट एंट्री मार चुकी हैं। जी हां, उन्होंने पहले दिन जो रेड कार्पेट पे वॉक किया है वो बहुत ही खूबसूरत गाउन में उन्होंने वॉक किया है और वो गाउन जो है वो बहुत ही खूबसूरत था, पीच कलर का वो गाउन था, ज्वेलरी भी बहुत खूबसूरत थी। ऑफ कोर्स जो उन्होंने आते ही जो ड्रेस पहनी थी वो भी बहुत फ्लेयरी थी, बहुत ही खूबसूरत थी और उसमें इंडियन आर्टिस्ट्स को ऑनर करने की कोशिश भी की गई थी। जी हाँ, सो अगेन आलिया भट्ट एंट्री मार चुकी है। आलिया भट्ट के अलावा प्रियंका चोपड़ा भी एंट्री मारती है और बहुत सारे और ए लिस्ट सेलिब्रिटीज, बट इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये बहुत सही वक्त हो जाता है क्योंकि पिछले 2 से 3 साल से इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत सारे इस रेड कार्पेट पे पहुंच रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीज गलत भी लगती है क्योंकि उन्हें लगता है कि इट्स नॉट अबाउट फैशन, कांस फिल्म फेस्टिवल इज नॉट अबाउट फैशन, इट्स अबाउट फिल्म्स, सेलिब्रेटिंग फिल्म्स, वॉचिंग फिल्म्स एंड ऑनरिंग द फिल्म्स। बट यहां पर अब कुछ और ही बन गया है। बट आप मुझे ये बताइए, क्या आपने आलिया भट्ट के वो दो लुक्स देखे, रेड कार्पेट लुक और वो जो आते ही उन्होंने लुक सर्व किया है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट जरूर मुझे बताइएगा। एंड इज देयर एनी सेलिब्रिटी जिसका आपको इंतजार है जिसके लुक का, तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। यहां पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
3: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
4: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं द डेविल वेयर्स प्राडा 2 की। और आप लोग बोलोगे कि ओके निव्या, वी आर इंटरेस्टेड। जी हाँ, सो डेविल वेयर्स प्राडा 2 जो है वो कितनी लेजेंडरी मूवी है उसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मतलब फैशन, ह्यूमर और बहुत सारा सरकाज्म जब एक साथ सर्व होता है, दैट्स व्हाट वी कॉल डेविल वेयर्स प्राडा 2। और मेरिल स्ट्रीप, एमिली ब्लंट, एन हाथवे एंड ये खतरनाक सी स्टारकास्ट अगर आपको फिर से मिलेगी, जिन्होंने आपको बहुत ही अच्छे से एंटरटेन किया था, टेस्टफुली एंटरटेन करना। एक होता है एंटरटेनमेंट, एक होता है टेस्टफुल एंटरटेनमेंट, उसको आप कभी भी नहीं भूल सकते। एंड डेविल वेयर्स प्राडा 2 इज जस्ट लाइक दैट। सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने द डेविल वेयर्स प्राडा 2 देखी या नहीं देखी। बट लेट्स टॉक अबाउट द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, क्योंकि $433 मिलियन मूवी कमा चुकी है। अभी उसे रिलीज हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। देर आर पीपल जो ये कह रहे हैं कि ये तो मतलब किसी बड़ी सुपर हीरो मूवी को भी पछाड़ रही है। मतलब जितने अच्छा काम पिछले साल सुपर हीरो मूवीज ने किया था, उससे कहीं ज्यादा अच्छा काम डेविल वेयर्स प्राडा कर रही है। आपको बता दें कि $100 मिलियन के हेफ्टी बजट में इसे बनाया गया है, लेकिन 2 हफ्ते में ही ये $433 मिलियन कमा चुकी है। एंड अभी भी इट इज गोइंग स्ट्रांग इन द थिएटर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिव्यू, the critical review. Of course, people are not as, you know, as satisfied, of this movie, from this movie, जैसे कि वो पहली वाली movie से थे. Devil Wears Prada is a classic movie. So, यहाँ पर बहुत सारी expectations थी और कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि वो expectations पुरानी हो गई हैं, पूरी नहीं हो रही हैं और इनफैक्ट disappointment भी हो रही है। कुछ लोगों को अच्छी भी लगी है मूवी, लेकिन देर आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो कि ये कह रहे हैं कि उनको मूवी बहुत अच्छी नहीं लगी। सो अगर आप इस मूवी को देखने का प्लान कर रहे हो, तो मैं आपको कहूंगी कि आप इसके OTT रिलीज का इंतजार कर लो, आप थिएटर में मत जाइए, क्योंकि OTT पे भी आप इसे देख सकते हो। क्योंकि क्रिटिकल रिव्यूज उतने अच्छे नहीं है, बट देन ऑफ कोर्स अगर आप फर्स्ट फिल्म के जो पहली मूवी है उसके बहुत ही बड़े फैन है एंड यू वांट टू एक्सपीरियंस दिस अगेन इन थिएटर्स, देन गो फॉर इट एंड लेट मी नो कि आपको ये मूवी कैसे लगी। बट $433 million इन जस्ट 2 weeks इज इनसेन फॉर श्योर। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।
6: दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

जी हाँ दोस्तों, मैं तो हमेशा से ही कहती आई हूँ कि ये AI मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। मतलब इसकी मंशा जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा, इसकी मंशा को भी तो इंसानों ने ही बनाया है, तभी तो ज्यादा बुरी है, तभी तो ज्यादा गलत है। जी हाँ, इंसान बहुत खतरनाक चीजें बना सकते हैं और उन्होंने खुद का ही गड़बड़ काम कर दिया है AI को बनाकर। अब AI ने एक और नया कारनामा किया है जो मेरे को आपके साथ शेयर करना है। सो एक न्यू AI टूल है जो यूजर्स को जो है वो हेल्प करता है, यूजर्स के लिए रिक्रिएट करता है उनके एक्सेस को। जी हाँ, एक्सेस को, एक्सेस को मतलब आपको समझ आ गया, विच एक्स आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? एक्स पार्टनर। जी हाँ, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो न्यू AI टूल लेट्स यूजर रिक्रिएट देयर एक्सेस एंड चैट विद देम अगेन। सो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि एक्सेस आर एक्सेस फॉर अ रीजन, तो उनको एक्सेस ही रहने दीजिए, उनको YZ और ABC मत बनाइए। और ये चीज मेरे लिसनर्स तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छे से जानते हैं, लेकिन दुनिया में और बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने एक्सेस इतना ज्यादा पसंद है कि वो मूव ऑन ही नहीं कर पाते। मतलब एक्सेस मूव ऑन करके आगे मून से लेके जुपिटर पर पहुंच गए हैं और वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, So, यहां पर यही हुआ है। सो हार्ट ब्रोकन यूजर्स जो हैं वो आजकल बहुत ज्यादा लाइमलाइट में बने हुए हैं, क्योंकि वो AI की तरफ, AI टूल्स की तरफ जो है वो टर्न कर रहे हैं, वो उनका सहारा ले रहे हैं अपने ब्रेकअप्स, अपने हार्ट ब्रेक से कोप अप करने के लिए। और यहां पर इस AI टूल ने उनको और भी अच्छे से एक हक देने वाला काम किया है। जो ये काम कर रहा है AI, वो उन लोगों के लिए हक जैसा है, वार्म हक जैसा, मतलब वो जादू की झप्पी जैसा। सो यहां पर ये एक्स पार्टनर्स को जो है वो रिक्रिएट किया जा रहा है। और इनको रिक्रिएट किया कैसे जा रहा है, इसके लिए फोटोज चाहिए एक्सेस की और मैसेजेस, चैट्स, और उसके बाद जो है AI उस सब को स्टडी करके जो है वो वैसा ही पार्टनर बना देता है। मतलब AI पार्टनर, इट्स नॉट अ रियल पार्टनर, बट AI पार्टनर। फिर वो लोग जो इस AI को यूज कर रहे हैं उनको मैसेजेस आते हैं, उनको वैसी सी बातें सुनने को मिलती है, वैसी सी आवाज सुनने को मिलती है जैसे उनके एक्स की है अपेरेंटली। मतलब एक्स नहीं है लेकिन फिर भी एक्स है। जी, आप लोग बोलोगे कि एक्स नहीं है तो क्या एक्स वाई है, या फिर वाई एक्स है और वाई है तो वाई क्या एक्स है, या एक्स क्या वाई है? आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? वेल, यू नो व्हाट आई मीन। यहां पर लिटरली लोगों की बुद्धि ना घास चरने नहीं गई है, कहीं और ही चली गई है। मतलब घास भी, अब मैं बोलूंगी कि पुरानी कहावत है, इनके लिए कुछ नया इस्तेमाल करना चाहिए। एक्सेस आर एक्सेस फॉर अ रीजन। अगर कोई रिलेशनशिप खत्म होता है तो वो किसी अच्छी चीज को स्टार्ट भी करता है। सो ऑलवेज ट्राई टू मूव ऑन, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा याद रखिए, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। लाइक लिटरली योर सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और AI का इस्तेमाल ना करें, AI जो है इज नॉट अ रियल पर्सन। सो ऐसे में वो आपको थोड़ा सा बहला सकता है, फुसला सकता है, पर इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगेन, बहुत सारे लोग जो है इसकी तारीफ कर रहे हैं कि ओके, जिनका दिल टूटा हुआ है, निविया शर्मा तुम क्या जानो उनका दर्द। वेल ऑफकोर्स आई कांट जानो उनका दर्द, बट यहां पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जिनका भी दिल टूटा है वो प्लीज इंसानों से दिल लगाइए आगे जाकर, और भी, या कुत्ते बिल्ले किसी भी से भी दिल लगाइए, बट वाई AI? डोंट गो फॉर AI। जी हाँ, यहां पर एक गेम बहुत

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
4: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
5: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
5: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
5: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। एंड दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं कि ऐसे टीनेज इन्फ्लुएंसर के बारे में जिसने इंस्टाग्राम को, सोशल मीडिया को लिटरली बवंडर में तब्दील कर दिया है। जी हाँ, एक टीनेज डिजाइनर जो कि लिटरली वेस्ट से, कटे फटी चीजों से जो वेस्ट हो गया है कपड़ा या कुछ भी गैजेट, उससे वो अपने फैशन को क्रिएट करता है। वो एवरीडे फैशन जो है वो क्रिएट करता है फ्रॉम एवरीडे ट्रैश, जिसको वो वायरल लग्जरी फैशन में कन्वर्ट करता है। आप लोग बोलोगे कि वायरल लग्जरी फैशन में कन्वर्ट करता है? जी हाँ। सो ये है कालू पुतिक, जो कि लिटरली एक बहुत ही जैजी इन्फ्लुएंसर है। जी हाँ, इससे पहले तक वो इन्फ्लुएंसर था भी नहीं, एकदम से वो इतना ज्यादा वायरल हो गया कि अब एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट। सो कालू पुतिक इज अ सेल्फ टॉट क्रिएटर फ्रॉम इथियोपिया। जी हाँ, इथियोपिया से है ये, और उन्होंने लिटरली हाई फैशन आउटफिट्स को टायर से, प्लास्टिक से, वायर से, कैन से और स्क्रैप मटीरियल से बनाया है। और एक चीज जो बहुत सारे लोगों को पसंद आई वो ये थी कि उनका हर एक आउटफिट पिछले आउटफिट बॉलीवुड से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। मतलब जो बड़े बड़े फैशन हाउसेस और ब्रांड्स नहीं कर पा रहे हैं, वो ये बंदागर दिखा रहा है। वर्सटैलिटी, यूनिकनेस, जी हाँ, हर एक आउटफिट, हर एक अटायर, हर एक लुक दूसरे लुक से बहुत ज्यादा अलग है। सो उसकी वीडियोज जो है वो एक्सप्लोड हुई है लिटरली ऑनलाइन, और जहां पर व्यूअर्स ने रियलाइज किया है कि ये स्टाइलिश रनवे जो है वो कम्प्लीटली जो है वो ऑफकोर्स डिस्कार्डेड वेस्ट से बनाया है, और इट्स नॉट लग्जरी फैब्रिक एनीथिंग, कोई भी ऐसी बहुत बड़ी महंगी चीज से ये वो अटायर क्रिएट नहीं किया गया, ये स्टाइल क्रिएट नहीं किया गया, ये लुक क्रिएट नहीं किया गया। सो फैशन पेजेस, मीम अकाउंट्स और क्रिएटर्स वर्ल्ड वाइड जो है उन्होंने रीपोस्ट करना शुरू कर दिया इसकी वीडियोस को, इस बंदे के लुक्स को और इसके कंटेंट को, और इसकी रील्स जो है वो लोगों को इतनी आर्टिस्टिक, सरप्राइजिंग, सस्टेनेबल और विजुअली एडिक्टिव लगी कि सबके सब लोग इसकी वीडियोस को स्क्रॉल कर रहे हैं, लाइक लिटरली। यू नो व्हाट, जब मैं इसकी वीडियो को देख रही थी पहली बार, तो मैंने एकदम से मैंने सोचा कि व्हाट इज हैपनिंग हियर, और मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन मैं फिर दूसरी रील से वापस जाकर फिर से उस रील पर आई, एंड देन आई वाज लाइक ओके, नाउ दैट ब्लू माय mind for sure, yeah, that's how I felt. So unlike polished influencers content, his videos rely on raw creativity, jo ki bahut hi zyada zaruri hai hamare liye. Raw creativity ki jo khoobsurti hoti hai wo polished cheezon mein nahi hoti. I'm not saying ki you should not go for polished things, you should, I mean you clearly should, but the thing is ki rawness jo hoti hai na kisi bhi cheez ki, wo sabse zyada pure form mein serve ki jati hai, and that is unique इन अ वे। सो या यहां पर एक और चीज जिसके लिए ये बहुत फेमस है कि ये किसी भी ऑफिशियल अकाउंट का, इंस्टाग्राम का ऑफिशियल अकाउंट का भी रिप्लाई नहीं किया इसने, जी हाँ, मतलब कोई भी कमेंट करे ये रिप्लाई करता नहीं है बंदा, इसको इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज में। आई एम नॉट गोना से कि आगे जाकर भी क्या इसे इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि पब्लिसिटी जैसे बढ़ रही है, जैसे आगे फेम जो है वो बढ़ रही है, क्या पता ये भी आगे जो है वो इंक्लाइंड हो जाए, और होते भी है तो इसमें क्या ही बुराई है। मतलब ही इज सच अ गुड क्रिएटिव पर्सन, और अगर उनको और जान पहचान मिलती है, उनको और पैसे कमाने का मौका मिलता है, देन व्हाई नॉट। बट अभी के लिए इन्होंने अपने दरवाजे सब चीजों के लिए बंद किए हैं, नो इंस्टाग्राम, नो बड़े बड़े फैशन हाउसेस, ऑल ही इज गोना डू इज हिज क्रिएटिविटी, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसे आपको सर्व करना। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन खूबसूरत है, प्यारा है, और इसका नाम है आज शाम होने आया।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की ओर। खबरों की दुनिया में कदम रखने का वक्त आ गया है और जानने का वक्त आ गया है क्या चल रहा है दुनिया में। जी हाँ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत की खबर के साथ। और भारत सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे MCX पर सोने का भाव 1.62 लाख पार कर गया। भारत सरकार ने बुधवार को सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से कर 15% कर दिया है। इसके बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर सोने की कीमतें 6% बढ़कर 1.62 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमतें भी तकरीबन 6% बढ़कर 2.95 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला इसलिए लिया है ताकि कीमती धातुओं की विदेशों से खरीद को कम हो और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटे। सरकार ने सोने और चांदी के आयात पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस लगाया है, जिससे प्रभावी आयात पर 6% से बढ़कर 15% हो गया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि वे कम से कम एक साल तक सोने के गहने ना खरीदें। लेकिन क्या भारतीय लोग ये सुनेंगे और ये मानेंगे? क्योंकि सोना भारतीय लोगों के लिए सिर्फ एक चमकती हुई चीज नहीं है, बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसे वो सिक्योरिटी के साथ रखते हैं, उनको लगता है कि इट्स अ ग्रेट वे ऑफ सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और बहुत सारी चीजें। सो ऑफकोर्स क्या ये बात मानी जाएगी? लेकिन इसका प्रेशर रुपए पर पड़ रहा है, ये तो पक्की बात है। और क्या इसे कम करना चाहिए भारतीय लोगों को? डेफिनेटली करना चाहिए, बट मानेंगे या नहीं मानेंगे वो तो वक्त ही बताएगा। यहां पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700.
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 04706318 प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: अर्न मनी फ्रॉम योर एम्प्टी ड्रिंक कंटेनर्स विद कंटेनर्स फॉर चेंज। योर एम्प्टी एलिजिबल कैंस, बॉटल्स एंड कार्टन्स रिसीव अ 10 सेंट्स रिफंड ईच। वी कॉल इट बिन कॉइन। सेव, स्पेंड और डोनेट योर बिन कॉइन टू अ कॉज यू सपोर्ट। देयर इज अ कंटेनर्स फॉर चेंज नियर यू। Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
5: Hi, this is Amitabh Bachchan.
6: And you are listening to Radio Brizwani.
7: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers.
6: And
7: you are listening to Radio Brizwani.
8: Hi, this is Salman Khan. And
9: you are listening to Radio Brizwani.
10: Hi, this is Deepika Padukone. And you are listening to Radio Brizwani.
11: To everyone tuning into Radio Brizwani, this is Alia.
12: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brizwani से।
13: To everyone tuning into Radio Brizwani, this is Shahrukh Khan.
14: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brizwani.
15: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ, और यहां पर हम बात कर रहे हैं खबरों की, पॉलिटिकल वर्ल्ड की और क्या चल रहा है वॉर फ्रंट पे। तो अब जरा बात करते हैं मिस्टर ट्रंप की। ट्रंप बोले, ईरान युद्ध खत्म करने के लिए चीन की जरूरत नहीं। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे ठीक पहले उन्होंने कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए चीन की मदद की जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि वो चीन दौरे पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से विस्तार से बातचीत करेंगे। ट्रंप ने कहा, हमारे पास बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सच कहूं तो ईरान हमारे एजेंडे में नहीं है, क्योंकि ईरान पहले से ही हमारे नियंत्रण में है। उन्होंने ईरान के लिए चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि या तो हम समझौते पर पहुंचेंगे या वे तबाह हो जाएंगे। गौरतलब है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की थी कि ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन की राजकीय यात्रा कर रहेंगे। ये लगभग 9 साल बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन यात्रा होगी। ट्रंप की ये यात्रा मार्च में होनी थी, लेकिन मध्य पूर्व में चल रहे तनाव की वजह से टाल दी गई थी।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब जरा बात करते हैं अगेन मिस्टर ट्रम्प के बारे में। लेकिन इस बार अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब अगेन एकदम खबरों वाले तरीके से, बट मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने फिर से क्या किया। एंड इट्स अ रोस्टिंग सेशन, सो ऑफ कोर्स आप सबकी हिस्सेदारी और आप सबकी अटेंडेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आई नो यू लव दिस सेशन। सो मिस्टर ट्रम्प जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ खतरनाक तो बोलते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनका जो आईसीई, वही आईसीई जिसको वो आइस कहते हैं, जो लिटरली इमिग्रेंट्स को पकड़ पकड़ कर उन्हें अमेरिका से बाहर निकालने का काम करता है और बहुत सारे लोगों के साथ उनका विवाद चल रहा है, उन्होंने कहा कि वो सोच रहे हैं कि आइस का वो नामकरण कर दे, मतलब वो नाम चेंज कर दे। आप लोग बोलोगे कि अच्छा ये कोई बच्चा जिसका नाम चेंज कर रहे हो, मतलब चल क्या रहा है तुम्हारा? जी हाँ, यहां पर वही चल रहा है। उन्होंने कहा कि व्हाट इफ आई चेंज आइसिस नेम टू नाइस। जी हाँ, आपने सही सुना। सो कहते हैं अभी तक जो है आप सुनते आए थे कि आइस ने ये किया, आईसीई ने ये किया, लेकिन अब आप सुनेंगे कि नाइस ने कितना अच्छा काम किया। जी हाँ, अगर हम इसका नाम चेंज कर देंगे तो कितना सही रहेगा। अरे मिस्टर ट्रम्प, नाम चेंज कर देने से अगर चीजें अच्छे से काम करने लग जाती है तो लोग अपना नाम चेंज कर देते ना, मतलब लिटरली आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग वैसे भी आई नो कहां जा रहा है, बट द थिंग इज कि द ऑडासिटी ऑफ हिम, लाइक लिटरली द ऑडासिटी। आप बोलोगे कि भाई अमेरिका का प्रेसिडेंट है, ऑडासिटी नहीं होगी तो क्या होगी? बट स्टिल, मतलब आईसीई को, मतलब आइस को नाइस बनाना और फिर बड़े ही अच्छे से उसको ग्लोरीफाई करना कि अच्छा अब हम आइस को नाइस बना देंगे, नाइस इसका नाम रख देंगे, नाइस इसका नाम जो है वो शेष कर देंगे, फिर उसके बाद जो है वो लोगों को बुरा नहीं लगेगा, लोगों को लगेगा कि नाइस है तो नाइस काम करेगा और नाइस तरीके से इन बुरे लोगों को हमारी कंट्री से बाहर निकालेगा। मतलब क्या दिमाग है, और अच्छी चीज अपने दिमाग चला रही है। ईरान पे हमला कर दिया, पूरी दुनिया की हालत खराब कर दिया, वहां तो दिमाग चल नहीं रहा है, बस दूसरे दिन ये स्टेटमेंट जरूर देनी है, यू नो व्हाट, ईरान तो पूरी तरह से हमारे कब्जे में है, ईरान कुछ नहीं कर सकता, ईरान को हमने पूरी तरह से धकेल दिया है, अब या तो वो मतलब लिटरली सरेंडर करेंगे या तो वो तबाह होंगे। अब आज ईरान अलग ही चल रहा है, ईरान बोलता है कि व्हाट इज ही टॉकिंग, मतलब क्या सुबह खाता क्या है ये इंसान। ईरान लिटरली धज्जा उड़ाता है, एंड ना सिर्फ ईरान, यू नो व्हाट द फनी थिंग इज, ईरान की जितनी भी एम्बेसीज है और ईरान की अथॉरिटीज से रिलेटेड जितनी भी जो चीजें हैं, जो कंपनीज हैं या जो एम्बेसीज हैं, जो भी हैं जिस भी कंट्री में, वो सब मिलकर ट्रंप का मजाक उड़ाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, ट्रंप को किसी ने एकदम मरा हुआ दिखा दिया, पता नहीं कौन था वो। जी हाँ, एंड द थिंग इज कि वो वाली सिचुएशन भी वायरल हो रही थी। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई बहुत बुरा इंसान है तो हमें उसकी डेथ विश करनी चाहिए, बिकॉज नो मैटर हाउ बैड एनी वन इज, वी शुड नेवर यू नो विश हिम और हर डेथ। सो अगेन वैसा ही कुछ किया उन्होंने, और वहां पर उसके बाद जो है वो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि आप किसी से कितनी भी नफरत कर सकते हैं, बट आपको ये हक किसने दिया कि आप उसको मरा हुआ दिखा दो। जी हाँ, ये मीम वायरल हो रहा था जहां पर लिटरली ट्रंप जो है वो मरे हुए दिख रहे हैं, वो डेड दिख रहे हैं, और वो अपने फ्यूनरल में उनकी बॉडी जो है वो नजर आ रही है, और वहां पर उसके लिए भी लोगों ने कुछ कुछ लिखा। सो आप इमेजिन कीजिए कि ट्रंप कितने टाइम तक ट्रंप रहने वाला है। आप लोग बोलोगे ट्रंप तो ट्रंप ही रहेगा, लेकिन ट्रंप प्रेसिडेंट ट्रंप रहेगा या नहीं रहेगा, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। सो या लोग बहुत ही हाथ धो के पीछे पड़े हुए, बट दिस थिंग जो कि अभी भी मुझे हंसी आ रही है सोच के, मतलब क्या क्या क्या, व्हाट डज ही स्मोक और व्हाट, मतलब क्या चल क्या रहा है कि आइस को नाइस बना दिया, मतलब जो एक अथॉरिटी सबसे ज्यादा क्रूअल और सबसे ज्यादा गलत काम कर रही थी उसको अब इन्होंने अच्छा दिखाने के लिए उसका नाम चेंज कर दिया फ्रॉम आइस टू नाइस। कोई आइसक्रीम है क्या, इसका फ्लेवर चेंज कर दिया। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन की बात और सी।
1: 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन से गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ इंटरनेट पर एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर एक मंदिर में, जी हाँ अपेरेंटली एक मंदिर जो कि भारत के इंडिया के तमिलनाडु में है, उस मंदिर में डोनेशंस नहीं ली जाती बल्कि प्रसाद दिया जाता है, वो भी खाने वाला नहीं बल्कि पैसों की फॉर्म में। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। अब आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा क्या मजाक है, हमने तो कभी नहीं देखा, हमने तो कभी नहीं सुना, या फिर शायद आपने सुना है, आई मीन यू नेवर नो राइट। तो यहाँ पर ये यूनिक टेम्पल जो है, और ये टेम्पल जो है वो तमिलनाडु में है, जहां पर एक स्पेशल फेस्टिवल जो है वो होता है, जिसका जो कि होता है श्री वरम थरुम मलिगा पराई अर करुपस्वामी टेम्पल में। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरी तमिल थोड़ी कमजोर है। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा इसे कमजोर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बिल्कुल नहीं आती है तुमको। चलिए ठीक है, आप समझ गए हो ना, इशारा ही काफी है, बस वही बहुत है, फीलिंग्स आप समझ जाते हो मेरी एकदम खतरनाक सी। जी हाँ, सो यहाँ पर जो ये खूबसूरत सा और ये प्यारा सा टेम्पल है, इसमें फेस्टिवल जो है वो होता है, और उस फेस्टिवल को पूरा ओवरनाइट जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और फिर उसके बाद जो है जो प्रसादम देने के लिए जो व्यक्ति बाहर आता है वो अपने हाथ में कोई खाने की चीज नहीं लाता बल्कि कॉइन्स देता है। सो जहां पर जितने भी लोग जो वहां पर आए होते हैं, डिवोटीज जो वहां पर पहुंचे होते हैं, उनको जो प्रसाद के फॉर्म में जो है वो कॉइन्स मिलती हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ये प्रोस्पेरिटी और प्रोटेक्शन जो है वो शो करता है ईविल से। मतलब वो जो प्रसाद है कॉइन्स के रूप में वो प्रोटेक्ट करता है और प्रोस्पेरिटी देता है बहुत सारा उनके भक्तों को। सो अगेन मैं कहती हूं ना, भारत के ट्रेडिशन, भारत के कल्चर्स का कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है। मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ, आप 30 किलोमीटर से आगे जाओ, आपको सब कुछ चेंज दिखता है, आपको कपड़े लिबास चेंज दिखते हैं, आपको भाषा डिफरेंट लगती है, और आपको खाना पीना भी डिफरेंट लगता है, और खूबसूरत जो ट्रेडिशंस हैं वो भी एकदम डिफरेंट लगते हैं। सो ऑफ कोर्स ये सारी वर्सेटिलिटी जो है वो इंडिया में है, लेकिन मैं ये सोच रही हूं कि कितने ही मंदिर ऐसा करने की सोच सकते हैं, बिकॉज मंदिरों में डोनेशन जाता है, आता नहीं है वापस। सो यहां पर तमिलनाडु का ये मंदिर अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक मंदिर है और बहुत ही जबरदस्त मंदिर है, क्योंकि ये कर पाना किसी हर एक के बस की बात नहीं है। जी हाँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, और क्या आपने भी ये वीडियो देखी है, जरूर मुझे बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: यार राहुल तेरे के
2: कंटेनर्स
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
8: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों ऐसे के साथ एक और बहुत ही विचित्र चीज यहाँ पर देखने को मिली है। आप लोग बोलोगे कि विचित्र चीज, ओके ओके निव्या शर्मा जल्दी से हमें बताओ, क्योंकि हमें सबको जानना है जो भी विचित्र हो रहा है इस धरती पर। सो हुआ कुछ ऐसा कि किसी ने नहीं सोचा था कि जब आपके पास एयरबर्ड्स और एयरपोर्ट्स आएंगे तो आप लोग वापसी करना चाहोगे वायर्ड एयरफोन्स की तरफ। जी हाँ, तो इफ आई टॉक अबाउट माइसेल्फ, आई कैन से आई एम अ फैन ऑफ वायर्ड एयरफोन्स एंड आई हैव नेवर यूज्ड एयरबर्ड्स और एयरपोर्ट्स। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड नॉट यूज एयरपोर्ट्स, बिकॉज टू ईच देयर ओन, बट द थिंग इज कि यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि इनका इफेक्ट जो है वो हमारे कानों को हो रहा है और ये रेडिएशन जो है वो देते हैं जो कि कुछ गड़बड़ कर सकती है। जी हाँ, बट देन देयर आर मेनी हेल्थ एक्सपर्ट जो कि ये कह रहे थे कि इसका कोई लेना देना ही नहीं है एक दूसरे से। बट अगेन ये जो है वो दो ग्रुप्स में बटी हुई है सिचुएशन। लेकिन अभी मैं इस बारे में बात नहीं कर रही और इस बारे में नहीं सोच रही कि क्या ये मेडिकल रीजंस की वजह से वायर्ड एयरफोन्स वापस आ रहे हैं। नो, वायर्ड एयरफोन्स वापस आ रहे हैं क्योंकि जेंजीज को लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छे से उनको नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स प्रोवाइड कर रहा है, थोड़ा सा ज्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग लग रहा है रादर देन एयरपोर्ट्स। मतलब एयरपोर्ट्स आपको जो है वो मॉडर्न लुक देते हैं, बहुत ही अपग्रेडेड लुक देते हैं, लेकिन वो एस्थेटिकली प्लीजिंग लुक जो वायर्ड एयरफोन्स देते हैं वो नहीं एयरपोर्ट्स आपको दे पाते। और आप गेस कीजिए कि ये कौन सी जनरेशन ने डिसाइड किया, आप गेस कर सकते हैं। या वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मिलेनियल्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल बिफोर मिलेनियल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल आफ्टर मिलेनियल्स विच आर ऑफ कोर्स जेंजीज। जी हाँ, सो जेंजीज ने ये डिसाइड किया है। और आपको पता है ये जो वायर्ड एयरफोन्स की तरफ जो इंक्लाइंड हो रहे हैं ना लोग, वो जेंजी लोग ज्यादा हैं। जी हाँ, नॉट द मिलेनियल वंस। मिलेनियल्स तो अभी भी यही सोच रहे हैं कि यार फाइनली मतलब हमें वायर से छुटकारा मिला है, हम क्यों फिर से वायर वाले एयरफोन्स यूज करें, हम तो एयरपोर्ट्स यूज करेंगे। लेकिन जेंजी लोग ये नहीं सोच रहे, जेंजी लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, एस्थेटिकली प्लीजिंग जो है वो ज्यादा वायर्ड एयरफोन्स लग रहे हैं। एंड वी आर नॉट सेइंग दैट कि ये सिर्फ नॉर्मल लोग कर रहे हैं, बल्कि ये सेलिब्रिटीज ने कल्चर शुरू किया। यू नो, फ्रॉम फैशन मॉडल्स टू बिग सेलिब्रिटीज, एवरीवन, खासकर द जेंजी वन, दे आर गोइंग फॉर वायर्ड एयरफोन्स। उनकी पिक्चर्स जो है जब भी क्लिक हो रही है, पैपराजी उनको क्लिक कर रहे हैं तो वो वायर्ड एयरफोन्स में दिख रहे हैं। एंड एंड यहाँ पर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वायर्ड एयरफोन्स जो है वो फिर से कम बैक करेंगे, बट नाउ जेन जी इज ब्रिंगिंग द कोड बैक एंड हाउ. जी हाँ, सो आप मुझे बताइए क्या आप एयरपोर्ट्स प्रेफर करते हैं या फिर आप वायर्ड एयरफोन्स प्रेफर करते हैं, और क्या आप अग्री करते हैं जेन जी की इस थिंकिंग से और थॉट प्रोसेस से कि एस्थेटिकली प्लीजिंग और वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग आपको वो वायर्ड एयरफोन्स ही देते हैं, नॉट द एयरपोर्ट्स. बताइएगा जरूर. यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि बहुत ही खास है.

चाइना इज लिविंग इन डिफरेंट एरा ये गलत नहीं होगा. मतलब उनकी सिटीज, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके वो बड़े बड़े कारनामे, उनके बारे में तो हम क्या ही कहें. और हमेशा बात करते रहते हैं रोबोटिक्स और एआई की फील्ड में जितने आगे वो चल रहे हैं उतना तो कोई चल ही नहीं रहा है, राइट. सो इन सब के बावजूद एक और चीज है जिसने चाइना के लिए मेरी इज्जत जो है वो जीत ली है. मतलब मैं चाइना के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है क्योंकि उन्होंने अपेरेंटली सोलर पैनल्स को पानी में शिफ्ट कर दिया है. मतलब उन्होंने पानी में बड़े बड़े पोल्स लगाए हैं और उसके ऊपर उन्होंने जो सोलर पैनल्स हैं उसको लगा दिया है. क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि सोलर एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए कोई भी जमीन वेस्ट ना हो. जमीन इज फॉर फार्मिंग, यानी कि लैंड इज फॉर फार्मिंग, एंड यू कैन लिटरली शिफ्ट योर सोलर पैनल्स ऑन यू नो वाटर. और जब आप वाटर पे शिफ्ट कर देते हो तो उसके बाद आपका पानी जो है वो भी सेफ है, आपके सोलर पैनल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी इकट्ठा कर रहे हैं, नेचुरल एनर्जी जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, और आपकी जमीन भी सेफ है, आपकी जमीन भी जो है वो फ्री है, जो कि खाना उगाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. लिटरली मतलब हमारी कंट्रीज ऐसा क्यों नहीं सोचती है, मतलब किसी की भी कंट्री ऐसा क्यों नहीं सोचती है. मुझे ऐसा लगता है कि चाइना जिस हिसाब से सोचता है, अगर हम सब सोचना शुरू कर देना तो लिटरली हम 2060s में पहुंच जाएंगे. मतलब ऑफकोर्स फास्ट फॉरवर्ड करके, क्योंकि हम तरक्की के मामले में 2060s में पहुंच जाएंगे, पर रहेंगे अभी हम इसी वाली एरा में. द थिंग इज कि यहां पर ये चीज कितनी ज्यादा गजब की. एक और चीज जो चाइना ने भी थोड़ी दिन पहले किया और मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी कंट्रीज को करनी चाहिए, उन्होंने घोषित कर दिया है इन्फ्लुएंसर्स पर वो कुछ भी मेडिकल, लीगल और एजुकेशनल एडवाइस नहीं दे सकते. और अगर उनको ये सारी की सारी एडवाइस करनी है, देनी है अपने फैंस को, लोगों को जिनको वो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उनको रिपोर्टेडली डिग्री जो है वो चाहिए होगी. मतलब उनको वेरीफाइड डिग्री की जो है वो जरूरत है. वेरीफाइड डिग्रीज के बिना वो किसी को भी कोई फालतू नॉलेज नहीं दे सकते. आप खुद सोचिए, इंटरनेट पर इतना नॉलेज है. यू नो व्हाट द फनी थिंग इज, की गली की बात है, मेरे पापा जो है वो किसी बंदे को देख रहे थे यूट्यूब पे, एंड वॉज लाइक यू नो वॉट, अगर आपको डायबिटीज को खत्म करना है तो आप ये करना शुरू कर दीजिए, वो करना शुरू कर दीजिए, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी का नाम लिया, कहते ये पीना शुरू कर दीजिए. एंड आई वॉज लाइक, मैंने कहा पापा आपने पता भी है आपको कि ये बंदा सच में वेरीफाइड है भी या नहीं, इसके पास वो नॉलेज देने की डिग्री है भी या नहीं. मतलब लिटरली कोई भी कुछ भी बोल रहा है और हम सब उस चीज को मान रहे हैं, खासकर हमारे बड़े पेरेंट्स लोग. लिटरली मतलब मैं समझा कर थक गई हूं, और कहीं ना कहीं जो मेरे लिसनर्स है वो भी इस चीज को फेस कर रहे होंगे. लेकिन चाइना ने यहाँ पे इसका जुगाड़ निकाल लिया, उन्होंने इसका रास्ता निकाल लिया. उन्होंने कहा है कि अच्छा, आपको मेडिकल नॉलेज देना है, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है और बहुत सारी चीजों के बारे में बताना है, तो ठीक है आप कीजिए, बट पहले डिग्री लीजिए. अगर डिग्री नहीं होगी तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, इनफैक्ट हम आपको फाइन लगाएंगे. जी हाँ, सो 1 million rupees यानी कि 11 lakh rupees तक का फाइन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रुपीज, येन में इट्स अ डिफरेंट केस, बट यहां पर इतना फाइन जो है वो इन्फ्लुएंसर्स को देना पड़ सकता है पर वीडियो. जो भी वो गड़बड़ बनाएंगे, जो भी वो बिना डिग्री के लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, कोई बहुत ही गंदा ज्ञान देने की कोशिश करेंगे. सो या मुझे ऐसा लगता है कि ये और कंट्रीज को भी प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जितनी ज्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन घूम रही है ना इंटरनेट पर, और वो भी फालतू की, उसको रोकना जरूरी है. यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी दोस्तों, इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अपने फेवरेट सेगमेंट की तरफ, यानी कि ओल्ड इज गोल्ड की तरफ। जी हाँ, पुराने गाने, खूबसूरत किस्से और वो प्यारी प्यारी बातें जो उस एरा को खास बनाती थी, उन स्टार्स की बातें जिनकी चमक लिटरली। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से अपनी फरमाइशों के साथ आ जाइए, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट टाइम। पुराने गाने अगर आप फरमाइश करना चाहते हैं तो दिस इज द परफेक्ट टाइम, जल्दी से आ जाइए। और जो पहला गाना मैं इस सेगमेंट में प्ले करने वाली हूँ वो बहुत ही खास है। उस गाने का नाम है तेरे हाथों में। क्या है गाना, खुद ही सुनिए।

जी दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है कि अगर गब्बर सिंह का रोल अमजद खान ने नहीं किसी और ने प्ले किया होता, तो क्या तब भी आप इतने ही बड़े फैन होते उस कैरेक्टर के? जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि उनके रोल को एक्चुअली ऑफर किया गया था किसी और को, एंड वो थे डैनी डेंजोंगपा। जी हाँ, डैनी डेंजोंगपा को ये ऑफर जो है वो रोल पहले किया गया था, अमजद खान को बाद में किया गया। लेकिन ऑफकोर्स अमजद खान ने इस रोल को लेजेंडरी बना दिया, अमर कर दिया। मतलब आज भी गब्बर का वो कैरेक्टर एक ऐसे खलनायक के रूप पर नजर आता है जैसा कि कोई भी उसको आउटडन नहीं कर सकता। और मैं, अगर कोई मुझसे पूछे कि गब्बर के रोल में अमजद खान के अलावा कोई और होता, तो मैं ही नहीं सोच सकती। इनफैक्ट मैंने उस मूवी को बहुत बाद में देखा है, बट द थिंग इज कि यहां पर मैं इतना जरूर कह सकती हूं कि जैसे उन्होंने कितने आदमी थे। जी हाँ, वो जो बोले तरीका है ना, दूर किसी गांव में बच्चा रोता है तो जी हाँ। सो अमजद खान ने इस रोल को क्या बखूबी तरीके से प्ले किया है, लेकिन डैनी डेंजोंगपा ही इसकी पहली चॉइस होते। जी हाँ, अगर उन्होंने मूवी धर्मात्मा नहीं साइन की होती फिरोज खान की, तो वही इस रोल को करने वाले थे। लेकिन अगेन मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, क्या आप गब्बर के कैरेक्टर में किसी और को सोच सकते हैं? जी हाँ, यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही जबरदस्त किस्सा आपको सुनाते हैं। एक ऐसा किस्सा जब उस वक्त म्यूजिक की दुनिया के दो सबसे बड़े सितारे, और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो सूरज, एक दूसरे के आमने सामने थे। एंड मैं बात कर रही हूँ किशोर दा और रफी साहब की। ऐसा कहा जाता है कि रफी साहब और किशोर दा को एक गाना ऑफर हुआ था, वो ड्यूएट था और उन दोनों को साथ में वो गाना गाना था। जी हाँ, सारा का सारा इंतजाम हो गया था, सबके सब लोग, निर्माता, म्यूजिक डायरेक्टर, यू नो, रिकॉर्डिस्ट, सबके सब लोग जो है वो वहां पर पहुंच गए थे, क्योंकि अगेन बहुत ही बड़े बड़े लोग दोनों साथ में आकर गाना गाने वाले थे, तो सब एक्साइटेड थे। फिर क्या था, अभी शुरुआत होती ही है वहां पर, और ऐसा कहा जाता है किशोरदा की तरफ से कि रफी साहब, एक बात बोलनी थी आपसे। मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं पहला अंतरा गा दूं, क्योंकि अगर मैं पहला अंतरा गा दूंगा तो शुरुआत जो है वो थोड़ी स्ट्रांग रहेगी। जी हाँ, और पहले अंतरे से ही तो है, थोड़ा स्ट्रांग रहेगा ये सिचुएशन। जी हाँ, अब यहां पर रफी साहब मुस्कुराते हैं और बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शांत तरीके से कहते हैं कि किशोर दा, गाने जो है वो जबरदस्त पहले अंतरे से नहीं बनता है, वो दिल की सच्चाई से बनता है। जी हाँ, गाना जबरदस्त पहले अंतरे से नहीं बनता बल्कि दिल की सच्चाई से बनता। और फिर क्या, उन्होंने ये बात खत्म की और साथ ही गाना शुरू कर दिया। जी हाँ, जो लोग वहां पर मौजूद थे उनका कहना है कि रफी साहब ने जो गाया और जिस खूबसूरती से उन्होंने गाया, ऐसा लग रहा था कि भगवान उनकी आवाज में आकर बैठ गया हो। जी हाँ, और ये खूबसूरत आवाज जब किशोर दा ने सुनी, वो चुप रहे और वो सुनते रहे। जब रफी साहब गाकर हटे तो उन्होंने कहा, रफी साहब मतलब क्या कहूं मैं, आपके जैसा कोई नहीं गा सकता, ना किसी ने गाया, ना किसी ने गा सकता है, और ये जो आपने गाया है बहुत ही खूब गाया है। जी हाँ, ऑफकोर्स दो बड़े बड़े सितारे जब एक दूसरे की तारीफ करते हैं तो लोग सुनते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि इनके बीच में तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक दूसरे से कंपटीशन की ओर लगी होती होगी। लेकिन यहां पर सिचुएशन डिफरेंट थी। किशोर दा ने रफी साहब की आवाज सुनकर, उनका पाठ सुनकर उनकी इतनी तारीफ की कि सब के सब लोग देखने लगे। यहां पर एक और गाना खूबसूरत सा आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, जब रफी साहब के गानों से मंत्रमुग्ध हो जाने की बात आए, वो भी उनके कंटेम्प्रेरीज की, तो मुकेश का नाम सबसे ऊपर आता है। जी हाँ, मुकेश ने तो इतना तक कह दिया था अपने बेटे को कि अगर तुम्हें गाना गाना है और तुम गाना गाना चाहते हो, तुम म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हो और तुम्हें गाना गाना पसंद है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, मेरे जैसा मत गाना, रफी साहब जैसा गाना। अब कोई पिता अपने पुत्र को कह रहा है कि तुम मेरे जैसा मत बनना, पर वो सामने वाले इंसान की तरह बनना जो कि बहुत ही अच्छा इंसान है और बहुत ही खूबसूरत गाता है, कितनी बड़ी बात होगी किसी के लिए, राइट? ऐसा कहा जाता है, और ये खुद मुकेश के बेटे ने ही ये किस्सा शेयर किया है कि गाइड का गाना चल रहा था, दिन ढल जाए और रात ना जाए, और ये गाना जब चल रहा था तो मुकेश जो है वो उस गाने को सुन रहे थे, और मुकेश जो है वो इस गाने को सुनकर रोना शुरू कर देते, मतलब उनकी आंखों से छमछम करके आंसू जो है वो गिरने शुरू हो जाते हैं, और बस फिर क्या है, वो गाना चलता रहता है, मुकेश सुनते रहते हैं एकदम मंत्रमुग्ध होके, और फिर उसके बाद वो सीधा कॉल करते हैं, फोन करते हैं रफी साहब को। जी हाँ, रफी साहब को वो कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि रफी मियाँ, क्या कहूँ मैं आपकी आवाज़ के बारे में, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं भगवान से सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि काश मुझे भी तुम्हारी तरह गाना सिखाया होता। जी हाँ, और यहाँ पर रफी साहब सामने से चुप हो गए, वो एकदम मौन हो गए, मतलब उनको वो चुप रहकर उन्होंने थोड़ी देर उस चीज को प्रोसेस किया, उस कॉम्प्लीमेंट को प्रोसेस किया, फिर उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात मुकेश के सामने कही, और उन्होंने कहा कि मुकेश भाई, आपकी आवाज की सच्चाई ही आपकी गायकी की खूब खूबसूरती है। जी हाँ, और उसको आप कभी मत खोने दीजिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। हम सब अच्छा गाना गाते हैं, बट आपकी आवाज उसमें अलग सच्चाई है। जी हाँ, यहाँ पर ये सुनते ही मुकेश लिटरली और भी ज्यादा रोना शुरू कर दिए, और ऐसा बहुत लोगों ने कहा है। जी हाँ, फिर चाहे किशोरदा के बेटे हों, फिर चाहे मुकेश के बेटे हों, सबको यही कहा गया कि कैसे रफी साहब जैसा गाना जो है वो सीखेगा, अगर गाना सीखना है तो रफी साहब जैसा सीखेगा। और सब कहते हैं कि कैसे किशोरदा हो या मुकेश हो, वो दोनों ही बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे रफी साहब की। बट देन अगेन, ये इतनी खूबसूरती, इतनी सच्चाई और इतना मैजिक सिर्फ रफी साहब की आवाज में हो सकता है, राइट? यहाँ पर इसी के साथ ये गाना मैं अब आपको सुनाने वाली हूँ। वेल ऑफ कोर्स उसकी बात हुई है तो गाना तो आपको सुनाना पड़ेगा, और यहाँ इस गाने के साथ अब मैं आपसे विदा भी लेने वाली हूँ। जी हाँ, जा रही हूँ मैं, वापस आऊंगी कल, और कल आपको बहुत एंटरटेन करूंगी, बहुत सारी चीजों के बारे में बताऊंगी, दिलचस्प बातें करेंगे और गपशप करेंगे, बहुत सारे गाने खूबसूरत गाने आपको सुनाएंगे, लेकिन आज आप मजे कीजिए, इस बारिश का आनंद लीजिए और सुनिए ये खूबसूरत सा गाना जो कि गाइड मूवी का है। अगेन, द लेजेंडरी मूवी गाइड का ये गाना रफी साहब की आवाज में, खूबसूरत सा दिन ढल जाए, हाय रात ना आए। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा, मिलते हैं अब आपसे कल।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Containers for Change rahi apne khali dabbiyan botlan to kamai karo. Tuhade har ik yog khali can, botal ate carton utte 10 cent da refund prapat hunda hai. Isnu assi bin coin kehnde haan. अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दियो। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435, याद रहे 0400-644-35 या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranikreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनीबैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनीबैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: मैडम आई एम योर ओनली एडम।
1: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। सिटी काउंसिल आज ब्रिस्बेन मेट्रो के नए रूट का मैप जारी कर रही है। ये रूट सीधे एयरपोर्ट को शहर के बाहरी इलाकों से जोड़ेगा, जिससे सफर का समय आधा रह जाएगा। वहीं रिवरसाइड फेस्टिवल आज शाम ब्रिस्बेन नदी के किनारे लाइट एंड साउंड शो का ग्रैंड रिहर्सल होना है। अगले हफ्ते से शुरू होने वाले फेस्टिवल के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं आज वेस्ट एंड में कम्युनिटी फार्मर्स मार्केट पर आयोजन है। यहां स्थानीय किसान फ्रेश ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जहां भारी भीड़ जुटने की संभावना रही। इसी के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड का नया कोर्स यूक्यू आज सस्टेनेबल आर्किटेक्चर पर एक नया इंटरनेशनल प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। इसके लिए दुनिया भर से स्कॉलरशिप के आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। इसी के साथ वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू की बात करें तो ब्रिस्बेन के पास एक क्वाला रेस्क्यू सेंटर आज अपना 10वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज यहां आम जनता को जंगली जानवरों के बचाव की ट्रेनिंग भी दी गई। इसी के साथ ब्रिस्बेन वेदर अलर्ट। ब्रिस्बेन में हल्की बारिश और गरज के साथ बहुत सारे पड़ने की संभावना रही। तापमान 18 से 25 डिग्री के बीच रहा। वहीं शाम को घर से बाहर निकलने वाले लोग छाता लेकर साथ निकले, यही कहा गया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले डिजिटल करेंसी पर नया अपडेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई आज अपनी डिजिटल करेंसी ई रुपया के विस्तार को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर सकता है। इसी के साथ मॉनसून की आहट। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने आज केरल के तटों के लिए अर्ली वार्निंग जारी की है। इस साल मॉनसून वक्त से 3 दिन पहले पहुंचने की उम्मीद है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी है। वहीं सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री आज गुजरात में देश के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन कर रहे थे। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने और टेक क्षेत्र में भारत की ताकत बढ़ने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली और मुंबई के बीच आज से 50 नई हाइड्रोजन फ्यूल बसों का ट्रायल शुरू हो रहा है। ये बसें प्रदूषण को जीरो लेवल पर लाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही हैं। इसी के साथ केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में आज सुबह तक रिकॉर्ड 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। प्रशासन ने आज भीड़ को देखते हुए नए दर्शन नियम लागू किए हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले ग्लोबल क्लाइमेट समिट जिनेवा में आज से वर्ल्ड क्लाइमेट समिट 2026 शुरू हो गया है। दुनिया भर के नेता आज समुद्र के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए इमरजेंसी फंड पर दस्तखत कर सकते हैं। वहीं मंगल मिशन की वापसी। नासा का परसिवरेंस रोवर आज मंगल ग्रह से मिट्टी के सैंपल लेकर वापसी का अपना अगला चरण शुरू कर रहा है। पूरी दुनिया की नजरें आज इसके डाटा सिग्नल पर टिकी हैं। वहीं यूरोप में नई वीजा पॉलिसी। यूरोपीय संघ यानी कि ईयू आज से डिजिटल नोमेड वीजा की नई कैटेगरी शुरू कर रहा है, जिससे आईटी प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप में रहकर काम करना और आसान हो जाएगा। वहीं जापान का नया आविष्कार। टोक्यो की एक कंपनी आज पानी से चलने वाली कार का नया प्रोटोटाइप पेश करने वाली है। दावा है कि ये 1 लीटर पानी में 100 किलोमीटर चलेगी। वहीं आज दुनिया भर में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं। WHO आज मेंटल हेल्थ एट वर्क पर एक नई ग्लोबल रिपोर्ट भी जारी करेगा। वहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आज एक नया रशियन मॉड्यूल जोड़ा जाना है। एस्ट्रोनॉट्स आज 6 घंटे की लंबी स्पेस वॉक भी कर रहे हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी। ICC आज T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए फाइनल वेन्यू और शेड्यूल ऐलान करने वाला था। सूत्रों के मुताबिक फाइनल मैच मेलबर्न या कोलकाता में हो सकता है। वहीं टेनिस की बात की जाए तो इटालियन ओपन में रोम में चल रहे इटालियन ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल्स आज शुरू हो रहे हैं। भारत के टॉप डबल्स खिलाड़ी आज अपनी चुनौती पेश करेंगे। वहीं फुटबॉल ट्रांसफर न्यूज, यूरोप के बड़े क्लबों के बीच आज खिलाड़ियों की अदला बदली को लेकर बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर का आज नया करार साइन हो सकता है। वहीं वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप की अगर बात की जाए तो बैंकॉक में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप शुरू हो रही है। भारतीय टीम से इस बार कम से कम 3 गोल्ड मेडल की उम्मीद की जा रही है। वहीं फॉर्मूला 1 अपडेट, मोनाको ग्रैंड प्री के लिए आज से टीमों ने अपने ट्रैक टेस्टिंग शुरू कर दी है। फरारी और रेड बुल के बीच आज कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं बास्केटबॉल की बात की जाए तो आज शाम होने वाले प्लेऑफ मुकाबलों के लिए टिकटों की मारामारी मची हुई है। एक बड़ा स्टार खिलाड़ी आज इंजरी के बाद वापसी कर सकता है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest?
2: कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future.

0: fast. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Mogill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
4: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
3: अच्छा, वो क्या?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
5: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: अर्न मनी फ्रॉम योर एम्प्टी ड्रिंक कंटेनर्स विद कंटेनर्स फॉर चेंज। योर एम्प्टी एलिजिबल कैंस, बॉटल्स एंड कार्टन्स रिसीव अ 10 सेंट्स रिफंड ईच। वी कॉल इट बिन कॉइन। सेव, स्पेंड और डोनेट योर बिन कॉइन टू अ कॉज यू सपोर्ट। देयर्स अ कंटेनर्स फॉर चेंज नियर यू। Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत वन ऑफ द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। I'm so confused.
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
1: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ji ho expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
4: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
5: Priya, next month mama ka birthday hai. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
6: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
5: अच्छा, वो क्या?
6: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
5: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
6: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 04706318 01। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: अर्न मनी फ्रॉम योर एम्प्टी ड्रिंक कंटेनर्स विद कंटेनर्स फॉर चेंज। योर एम्प्टी एलिजिबल कैंस, बॉटल्स एंड कार्टन्स रिसीव अ 10 सेंट्स रिफंड ईच। वी कॉल इट बिन कॉइन। सेव, स्पेंड और डोनेट योर बिन कॉइन टू अ कॉज यू सपोर्ट। देयर इज अ कंटेनर्स फॉर चेंज नियर यू। Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
11: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
10: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
11: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
10: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
12: Containers for change rahein, apne khali dabbiyan botlaan to kamai karo. Tuhade har ik yog khali can, botal ate carton utte 10 cent da refund prapat hunda hai. Isnu asi bin coin kehnde haan. अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो, जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दियो. तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ, ना के कूड़े दान विच. अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
1: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट विरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: जी मैं संदेश अलग शर्मा तो सुन रहे हो रेडियो तो सोनी वसर हो रहे हैं तेरी बड़ा हो चुके हैं हम तक हम खबर का तक शुरू करते हैं शुरुआत
1: सब तो पहला रुख करते पंजाब के वाल जिथे जलंधर भाजपा झूठ नोली मार दी गई इतने दोवें धिर विचाले समझौता कराने आए सन विवाद को समझाने पंचायत बुलाई गई इस दौरान एक धिर ने सब के सामने फायरिंग कर दी। इस घटना में भाजपा आगू मोरूपुरी समेत दो व्यक्ति जख्मी हो गए तो दोवां नूं तुरंत निजी अस्पताल विच दाखिल करवाया गया। उधर दूजे पास देश की सब तो वड़ी मैडिकल दाखला प्रक्रिया नीट यूजी 2026 आखिरकार रद्द कर दी गई है। 3 मई नारह अशारिया 79 लाख विद्यार्थियों ने कड़ी सुरक्षा विच प्रीख्या दी सी पर हुण जांच एजेंसियां दे रडार ते कथित गैस पेपर आ गया है जिसने पूरे सिस्टम ते सवाल खड़े कर दिते हैं। राजस्थान दे चुरू तो शुरू होया है गैस पेपर कोचिंग नैटवर्क ते वट्सएप ग्रुपां राही विद्यार्थियों तक पहुंचा ते हुण एही देश दी सब तो वड्डी प्रवेश परीक्षा रद्द होने दी वड्डी वजह बन गया। राजस्थान पुलिस दी कार्रवाई ग्रुप मुताबिक ए हाथ नाल लिखा दस्तावेज सी जिस विच करीब 410 सवाल शामिल सन। जांच विच सामने आया है कि जिन्हां विच लगभग 120 सवाल सीधे नीट यूजी 2026 दे असली पेपर विच आए सन। एसओजी दे एडिशनल डायरेक्टर जनरल विशाल बांसल ने दस्सिया है कि एह गैस पेपर परीक्षा तो काफी पहला ही विद्यार्थियों विच घूम रहा सी। जांच एजेंसियों के मुताबिक बायोलॉजी और कैमिस्ट्री के 100 तो वध सवालों विच हैरान करन वाली समानता से अधिकारियों का कहना है कि इस कारण 720 विचों करीब 600 अंक प्रभावित हो सकते हैं। जांच विच सामने आया कि गैस पेपर एक एमबीबीएस विद्यार्थी ने तैयार किया जो केरल के एक मेडिकल कॉलेज विच पढ़ता है ते मूल रूप नाल चुरू दा रहण वाला है। आरोप है कि उसने 1 मई नूं इह दस्तावेज सीकर विच अपने जानकार नूं भेजिया सी। इस तों बाद इह कोचिंग नैटवर्क ते वट्सएप ग्रुपां राही तेजी नाल फैल गया। जांच एजेंसियां नूं चैट रिकॉर्ड विच फॉरवर्डड मैनी टाइम्स वी टैग मिलिया है। उधर दूजे पासे कैनेडा दे विनीपेग शहर विच एक सिख नौजवान पुलिस भर्ती प्रक्रिया विच बैठण तो रोक दिता गया है। प्रीख्या केन्द्र के अधिकारियों ने उसनु किरपान उतार के अंदर आने लई कहा पर नौजवान ने किरपान उतारन तो इनकार कर दिता। इस तों बाद उसनु एग्जाम हॉल विच दाखिल नहीं होण दिता गया ते ओह बिना पेपर दिते ही वापस आ गया। पंजाबी नौजवान जसपाल सिंह गिल दा कहना है कि किरपान उसकी आस्था ते धर्म दा प्रतीक है। उसने दस्सिया कि पुलिस अधिकारी ने प्रीख्या हॉल विच दाखला देण लई किरपान उतारन लई दी शर्त रखी थी ਇਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। उधर पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा हाई कोर्ट तो वड्डा झटका लग्या है। ईडी वालों गिरफ्तार किए गए संजीव अरोड़ा ने अपनी गिरफ्तारी ते रिमांड नूं चुनौती दिंदिया पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट विच पटीशन दायर की सी। इस मामले ते सुनवाई हुई पर अदालत वल्लों फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। हुण इस मामले की अगली सुनवाई 13 मई नूं होवेगी। ईडी ने संजीव अरोड़ा के चंडीगढ़ स्थित सरकारी निवास से छापा मारिया जिस तों बाद शाम नूं उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी तों बाद उन्हां नूं देर रात गुरुग्राम की एक विशेष PML मनी लॉन्डरिंग रोकथाम एक्ट अदालत विच पेश किया गया जिथे ईडी दीआं दलीलां सुनन तों बाद अदालत ने अरोड़ा नूं 7 दिनां दे रिमांड ते भेज दिता जो 16 मई तक लागू रहेगा। उधर भारतीय सीबीआई वालों पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों नाल जुड़े 20 लाख रुपए रिश्वतखोरी के मामले में वड्डी कार्रवाई करते हैं। 3 मुलजमान नूं गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई दौरान विजिलेंस चीफ दा रीटर मौके तो फरार होने विच कामयाब हो गया जिसकी भाल जारी है। इस बारे सीबीआई वालों जारी किए गए प्रेस नोट मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी ने पंजाब स्टेट टैक्स अफसर की शिकायत से कार्रवाई करदिआं एक वड्डी रिश्वतखोरी के नैटवर्क का पर्दाफाश किया। शिकायतकर्ता ने इल्जाम लगाया है कि उस विरुद्ध पंजाब विजिलेंस ब्यूरो लंबित एक शिकायत नूं खत्म करन दे बदले विकास गोयल उर्फ विक्की अते उसके पुत्र राघव गोयल वलों 20 लाख रुपए की रिश्वत मंगी गई सी। दोवें मुलजम डिज विजिलेंस दे रीटर पीओ राणा लई विचोले दा काम कर रहे सन। सीबीआई ने जांच दौरान रिश्वत की मांग की पुष्टि होने तो बाद सौदा 20 लाख तो घटा के 13 लाख रुपए नकद अते ओपी राणा लई एक सैमसंग गलैक्सी Z Fold 7 मोबाइल फोन विच तय होया सी। 11 मई 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਟ੍ਰੈਪ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ ਨੂੰ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ, ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਆਪਣੇ ਗਨਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ, ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਦੋ ਗਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੀਡਰ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਹਾਲੇ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ AK-47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗਨਮੈਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਹੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ brisoni@brisoni.com। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਰੇਡੀਓ brisoni 1701 ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote, code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Mera naam Dr. Kumar hai. Aur yahan kuch aisa hai, जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 101 एम ते जी आप चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो भारतीय सिनेमा सिर्फ बॉलीवुड की चकाचौंध तक सीमित नहीं रहा। पिछले कुछ साल खेतरी भाषावां विच बनिया कई फिल्मां ने अंतरराष्ट्रीय मंचां ते भारत का नाम रोशन किया है। BFTA कांस वेनिस ते ऑस्कर वर्गे बहुत सारे अवार्ड फंक्शन विच भारतीय फिल्मां ने अपनी स्टोरी टैलिंग ते संवेदनशीलता नाल दुनिया नूं प्रभावित किया है। तो मैं सोचा कि क्यों ना तुहानूं उन्हां फिल्मां बारे दसा जिन्हां ने विदेश विच वाही बटोरी हैगी है। शायद बहुत बारे तो थोनू पता होना बहुत बारे नहीं पता होना क्योंकि अदर लैंग्वेज है तो अदर लैंग्वेज जी आती हैगी है तो उस बारे सानू शॉर्ट मूवीज बारे ज्यादा पता नहीं हुंदा। तो चल मैं तुहानू दसदी हां ते जे थोनू समझ आती हुई तो जरूर देखियो क्योंकि फिल्म बहुत ज्यादा वधिया है।

जी जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101.1 FM ते। जी आर जे संदेश चालक दे नाल तुसीं बने होए हुणे ना फिल्मां दे विचों जिहड़ियां पूरी दुनिया दे विच छाईयां होईयां ने, तां इह जिहड़ी लिस्ट मैं फरोल रही हां तां इस विच सब तों पहला नाम जिहड़ा आउंदा है उह हैगा बूंग। जी हाँ, ये लक्ष्मी प्रिया देवी दे निर्देशन विच बनी मणिपुरी फिल्म हैगी है बूंग। है फिल्म का नाम ते बूंग ने ना हाल ही विच बाफ्टा अवार्ड 2026 विच बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीत के ना इतिहास रच दिता है। फरहान अख्तर ते रितेश सिद्धवानी दे एक्सल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस इस फिल्म विच एक छोटे मुंडे की कहानी है जो अपने पिता की तलाश विच निकलता है। फिल्म मणिपुर विच जाति तनाव ते सीमा दीआं चुनौतियां नूं एक बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाउंदी हैगी है, जो बहुत वधिया लगती है क्योंकि जेड़ी चीज बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाई जांदी हैगी ना, वो नो डाउट कमाल दी हुंदी है।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: मुंडा संधुआ।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Mera naam Dr. Kumar hai. Aur yahan kuch aisa hai, जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: Hi, this is Amitabh Bachchan
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Salman Khan
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: Hi, this is Deepika Padukone और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सर वन एम ते जी आर चे संदेश चौलक दिना से बने हुए हो। अगली फिल्म थोड़ी जी पिछे जाने हैं 2015 दे विच। ओ फिल्म दा नाम हैगा मसान। नीरज गायवान दी डेब्यू फिल्म वाराणसी विच दो कहानियां देवी जिस जो रिचा चड्डा बने सी ते दीपक जो विकी कौशल बने सी दी सामाजिक दबाव ते मुक्ति दी खोज ये है की है। 2015 दे कांस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते जिस विच FIPRESCI अवार्ड्स अते प्रोमिसिंग फ्यूचर प्राइज सीगा। वाराणसी दी उथे जमीन ते बनी इस फिल्म विच रिचा चड्डा ते विकी कौशल ने यादगार एक्टिंग की थी है। विकी कौशल दी किस्मत इस फिल्म दे नाल चमकी सी।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Containers for change rahin apne khali dabbiyan botlan to kamai karo. Tuhade har ik yog khali can, botal ate carton utte 10 cent da refund prapat hunda hai. Isnu asi bin coin kende haan. अपने बिन क्वाइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दियो। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़े दान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

जीत एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जीत थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सन वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म है किया ऑल दैट ब्रीथ्स। ये नाम सुन के लगता है कि हॉलीवुड मूवी होनी है बट नो नो नो नो नो नो हॉलीवुड मूवी बिल्कुल भी नहीं। ऑल दैट ब्रीथ्स ए इंडियन मूवी है कि शौनक सेन वालों निर्देशित डॉक्यूमेंट्री हैगी है 2023 ऑस्कर दे लई नॉमीनेट हुई सी। 90 मिनट की यह फिल्म दिल्ली के वजीराबाद विच दो भरावां की कहानी है जो जख्मी काली चिलन नूं बचाउंदे है कि नहीं। फिल्म ने कांस विच गोल्डन आई अवार्ड ते संडांस विच वर्ल्ड सिनेमा ग्रांड जूरी प्राइज समेत 17 इंटरनेशनल अवार्ड जीते है कि नहीं। इस 2023 ऑस्कर विच बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर नॉमीनेशन मिलया है।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: যেতে।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote, code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: Mera naam Dr. Kumar hai. Aur yahan kuch aisa hai, jise janna achha hai. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
3: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
4: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
5: Mixing in the house.

जी देखो, वेला तो हो चुकिया है थोड़े तो इजाजत लैण दा, पर जाण तो पहला थोड़नू कुछ एक होर फिल्म बारे दसना जरूरी सी, मैं सोचा वह भी दस ही दिनी है। तो उस फिल्म का नाम है जी डिसिप्लिन जी है, चैतन्य वालों निर्देशित मराठी फिल्म हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आधारित है। की है फिल्म नू वेनिस फिल्म फैसटिवल विच FIPRESCI अवार्ड मिले हैगा, ते अल्फोंसो कुआरॉन हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से। फिल्म एक संगीत साधक की कलात्मक पूर्णता की तलाश से आधुनिक दुनिया नाल टकरा की कहानी है। बहुत ज्यादा सोहनी है कि यह फिल्म तुसी जरूर देखियो। बाकी मिलते तो असं रहने हों, जुड़ते जरूर है करो तुम साढ़े रेडियो बरसवानी 101.9 साढ़ फेसबुक पेज है जी, बरसवानी @bersawani.com साड़ी ईमेल आई डी है, जरिए जेड़ा भी तुम अपना चाहते हो अपना लो, पर सा गलबात जरूर करो, है ना। तो बाकी मैं तो यही कहना है कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखा करो। सत श्री अकाल।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
1: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Yaar, sab theek hai. Bas mummy papa India mein akela feel karte hain. Unorganized helpers pe bharosa bhi nahi hota. Kal ko emergency ho jaye to?
4: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
3: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
4: बिल्कुल। ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com।

0: www.bharatgas.com. We pride ourselves in providing excellent service.
1: Priya, next month mama ka birthday hai. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: अर्न मनी फ्रॉम योर एम्प्टी ड्रिंक कंटेनर्स विद कंटेनर्स फॉर चेंज। योर एम्प्टी एलिजिबल कैन्स, बॉटल्स एंड कार्टन्स रिसीव अ 10 सेंट्स रिफंड ईच। वी कॉल इट बिन कॉइन। सेव, स्पेंड और डोनेट योर बिन कॉइन टू अ कॉज यू सपोर्ट। देयर्स अ कंटेनर्स फॉर चेंज नियर यू। Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Containers for change rahin, apne khali dabbiyan botlan to kamai karo. Tuhade har ik yog khali can, botal ate carton utte 10 cent da refund prapat hunda hai. Isnu asi bin coin kende haan. अपने बिन क्वाइन नू बचा के रखो, खर्चो, जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दियो. तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़े दान विच. अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो.
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया.
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें.
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं.
3: मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो.
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस. और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435, याद रहे 0400-644-435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर.
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है.

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: सर, ऑन स्टेज 5 मिनट्स।
2: ओके,
1: तुम आ रही हो?
2: मैं जा
1: रहा हूं। लगता रूम में रह गया।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
1: अरे वाह, इनका पता बताना.
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171. वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
3: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
4: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
3: अच्छा, वो क्या?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 04706318 प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: अर्न मनी फ्रॉम योर एम्प्टी ड्रिंक कंटेनर्स विद कंटेनर्स फॉर चेंज। योर एम्प्टी एलिजिबल कैंस, बॉटल्स एंड कार्टन्स रिसीव अ 10 सेंट्स रिफंड ईच। वी कॉल इट बिन कॉइन। सेव, स्पेंड और डोनेट योर बिन कॉइन टू अ कॉज यू सपोर्ट। देयर्स अ कंटेनर्स फॉर चेंज नियर यू। Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane पे.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Containers for change rahi, apne khali dabbiyan botlan to kamai karo. Tuhade har ik yog khali can, botal ate carton utte 10 cent da refund prapat hunda hai. Isnu asi bin coin kende haan. अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ. तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच. अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो.
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया.
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें.
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं.
3: मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो.
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस. और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर. याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल.
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो.
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस. और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर. याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर.
6: मेरी पत्नी

कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स और चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
2: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीडा। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Yaar, sab theek hai. Bas mummy papa India mein akela feel karte hain. Unorganized helpers pe bharosa bhi nahi hota. Kal ko emergency ho jaye to?
5: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
4: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
5: बिल्कुल। ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: अर्न मनी फ्रॉम योर एम्प्टी ड्रिंक कंटेनर्स विद कंटेनर्स फॉर चेंज। योर एम्प्टी एलिजिबल कैंस बॉटल्स एंड कार्टन्स रिसीव अ 10 सेंट्स रिफंड ईच। वी कॉल इट बिन कॉइन। सेव स्पेंड और डोनेट योर बिन कॉइन टू अ कॉज यू सपोर्ट। देयर्स अ कंटेनर्स फॉर चेंज नियर यू। Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
4: Hi, this is Amitabh Bachchan.
5: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
6: Hi guys, I'm Madhvi from the Meat Brothers. Aap sun rahe hain Radio Briswani.
7: Hi, this is Salman Khan.
8: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
9: Hi, this is Deepika Padukone. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
11: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
12: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
13: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नज़दीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
5: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business, built on trust.
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
4: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। वी प्राइड आवरसेल्व्स इन प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट सर्विस।
0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
5: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
5: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
5: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
6: कह दूं तुम्हें
7: हाँ
6: या चुप रहूं?
7: ना,
6: दिल में मेरे आज क्या है?
7: क्या है?

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। उमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: अर्न मनी फ्रॉम योर एम्प्टी ड्रिंक कंटेनर्स विद कंटेनर्स फॉर चेंज। योर एम्प्टी एलिजिबल कैंस, बॉटल्स एंड कार्टन्स रिसीव अ 10 सेंट्स रिफंड ईच। वी कॉल इट बिनकॉइन। सेव, स्पेंड और डोनेट योर बिनकॉइन टू अ कॉज यू सपोर्ट। देयर इज अ कंटेनर्स फॉर चेंज नियर यू। Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ सुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
10: यार, I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
9: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
10: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
9: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
11: Containers for Change rahin apne khali dabbiyan botlan to kamai karo. Tuhade har ik yog khali can, botal ate carton utte 10 cent da refund prapat hunda hai. Isnu asi bin coin kehnde haan. अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो, जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दियो. तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच. अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो.
12: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया.
13: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें.
12: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
13: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं.
12: मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
13: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो.
14: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस. और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर. याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर.
15: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है.

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

जीवन अमूल्य है। इस जीवन में हमें जो कुछ मिला है वो सब अमूल्य है और वो सब हमें प्राप्त हुआ है उस ऊपर वाले की कृपा और उसकी रहमत से। उसी रहमत को धन्यवाद देने के लिए, उसका शुक्रिया कहने के लिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड देने के लिए अपने जीवन आधार के सफर में आज हम और आप फिर से एक साथ आ गए हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ सताक्षी आज एक बार फिर से। और जीवन एक ऐसा भंवर है जिसे पार करने के लिए एक बेस की, एक आधार की बहुत जरूरत है और वो हमें मिलता है तब जब हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, अपने ईश्वर को प्राप्त करना शुरू करते हैं और उसकी ओर बढ़ना शुरू करते हैं, हम मनुष्यता को प्राप्त करते हैं। आइए आज ऐसे ही एक सफर पे फिर से अपने जीवन के आधार को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं जीवन आधार में रेडियो ब्रह्मवाणी 1701 एम पर सताक्षी के साथ। और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए मेरे साथ।

जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 पर और आपके साथ इस सफर में सताक्षी है। धैर्य यानी कि पेशेंस सीखा कई बार है लेकिन समझ हम और आप नहीं पाते हैं, लेकिन धैर्य जो इंसान रखता है, जो इंसान पेशेंस रखता है, वही इंसान जीवन में तरक्की कर पाता है, वही इंसान जीवन में वो सब कुछ हासिल कर पाता है, पा पाता है जो वो पा सकता है, और वो भी अपनी इच्छा के अनुसार। अगर आप भी अपने मन मुताबिक चीजें पाना चाहते हैं तो धैर्य रखिए। आज बेशक आपके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर धैर्य और मेहनत आप रखेंगे, यानी कर्म अपने अच्छे रखेंगे और पेशेंस रखेंगे, ऊपर वाले पर भरोसा रखेंगे, तो निश्चित तौर से आज ना सही लेकिन आप जीवन में वो सब हासिल कर पाएंगे जो असल में आप डिजर्व करते हैं और आप पाना चाहते हैं। आइए इसी बात पर एक और गीत को यहाँ पर सुनते हैं। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

सुबह के कुछ अमूल्य विचार जीवन आधार में इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। और इन विचारों में आपके साथ सताक्षी भी अपने कुछ विचार घोल रही है और इस सफर को और भी खूबसूरत बना रही है। सुनते रहिए जीवन आधार और यूं ही रहिए मेरे साथ।

अक्सर हम डर जाते हैं जब लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, अक्सर हम घबरा जाते हैं, हमें लगता है कि अब कैसे ही हम इस जीवन में आगे बढ़ेंगे या हम कैसे कुछ भी जिंदगी में कर पाएंगे। तो देखिए, जिंदगी में घबराइए नहीं, डरिए नहीं, क्योंकि आपके साथ वो खड़ा है जो इस दुनिया में सबसे बड़ा है। याद है ना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ खड़े हो गए थे और अपनी पूरी सेना को भी कौरवों को दे दिया था, उसके बाद भी जीत पांडवों की हुई। इसलिए जब आपके साथ वो ऊपर वाला खड़ा है तो फिर डर भय किस बात का है। आप जीवन में सही कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और बाकी सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए। आइए इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं जीवन के आधार को, यानी कुछ ऐसी बातों को जो आपकी सुबह को भी खास बना रही हैं और सुबह में ऐसा रस घोल रही हैं जो मिठास का रस है, प्रभु भक्ति का रस है, ईश्वर की प्राप्ति का रस है और उस ऊपर वाले पर विश्वास का रस है। इसी रस के साथ, इसी भक्ति रस के साथ आगे बढ़ेंगे। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

लोग आपसे ये उम्मीद करते हैं कि उनकी हर बात पर आप रिएक्ट करें, श्रोताओं हर बात पर आप बोलें। अक्सर लोग आपको उकसाते भी बहुत हैं, बहुत परेशान करते हैं कि आप बोलें कोई बात हो और फिर लोगों के आगे तमाशा बने। लेकिन ऐसी जगह पर मौन धारण कर लेना, मौन हो जाना, शांत हो जाना, इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। लोगों के तीखे शब्द, तीखे बाण आपको लगते जरूर हैं, लेकिन बस इतनी बात समझने की जरूरत है कि वो आपको इसलिए उकसा रहे हैं ताकि आप पलटकर वार करें, आप अपने शब्दों का वार करें और फिर वो मौन हो जाएं और आप चिल्लाते रहें और वो उसका मजा लें। इसलिए ईश्वर पर कहते हैं ना, कभी कभी चीजें छोड़ देनी चाहिए, और मौन धारण करना ऐसे लोगों के लिए खासकर सबसे बड़ा सबक होता है। आइए इसी सबक के नाम ये अगला गीत सुनते हैं, और सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सुताक्षी।

कटाक्षी के साथ जीवन को समझने की एक कोशिश आज एक नई सुबह हम और आप मिलकर कर रहे हैं, फिर से जीवन आधार के खास सफर में। इसी सफर में आगे बढ़ेंगे अभी एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए कटाक्षी के साथ।

चुंबक लोहे प्रीति है लोहे लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। रेडियो प्रसानी 1701 एम पर जीवन आधार के सफर में श्रोतागण आप हैं सताक्षी के साथ। चुंबक को देखा है ना, मैग्नेट आयरन से उसकी अजब सी मोहब्बत है, ऐसे चिपकता है उससे कि लोहे को भी उठा लेता है। इसी तरह से हमारे शब्द भी हैं। कितना ही कठोर इंसान हो, कितना ही पत्थर दिल इंसान हो, अगर आप उससे मिठास से बोलते हैं, अगर आप उससे प्यार से बोलते हैं, तो आप उसे अपना मीत बना लेते हैं। हमारे शब्दों में वो ताकत है ना कि हम किसी को जान से मार भी सकते हैं और किसी को काल के ग्रास से छुड़ा भी सकते हैं, किसी को मरने से बचा भी सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, प्यारा बोलिए, ताकि लोग ऐसे जुड़ जाएं जैसे लोहा मैग्नेट से जुड़ जाता है, चुंबक से जुड़ जाता है। आइए इसी बात पर, कबीरदास जी की इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

ये था आज एक और जीवन की आधार का हमारा और आपका साथ जीवन आधार, जिसमें आप सताक्षी के साथ थे। एक ऐसे ही सफर पर कल फिर से आपके साथ चलूंगी, आपके साथ कुछ अनुभव अपने साझा करूंगी और कुछ मॉर्निंग थॉट्स ऐसे आपके लिए लेकर आऊंगी जो आपकी सुबह को और भी खूबसूरत बनाएंगे और ईश्वरीय शक्ति के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के सफर से अब लेते हैं इजाजत। नमस्कार।

हेलो जी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल जी, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी, आपके अपने दोस्त और होस्ट आरजे चानी जैन के साथ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही हेल्दी होंगे और हमेशा ऐसे ही हंसते रहें। तो दोस्तों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है चाने का सफर, जिस सफर में हम बातचीत करते हैं बहुत ही खास, जो हमारे लिए और सबके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी होती है और बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। और आज का भी ऐसा ही कुछ खास टॉपिक है जो सभी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आप सभी के बीच लेकर आती हूँ कुछ ना कुछ काम वाली चीज जो हमारे फायदे में ही होती है, चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे वो ब्यूटी टिप्स हो, वो हेल्थ की टिप्स हो, बहुत ही फायदेमंद होते हैं। एक बार वो अपनाकर जरूर देखिएगा। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ये गीत, उसके बाद बताते हैं कि क्या कुछ खास है आज। सुनते रहिए रेडियो ब्रिसवानी।

दोस्तों, गर्मी हो या सर्दी, मौसम जब भी बदलता है तो टैनिंग और सनबर्न जो है हमेशा हो जाती है और त्वचा जो होती है, स्किन जो होती है, उसकी रंगत भी कम पड़ने लगती है। ऐसे में तुरंत जो है ग्लो पाने के लिए घर पर हम नेचुरल तरीके से कुछ ऐसे फेस पैक तैयार करेंगे जिन्हें लगाकर आपको बहुत लाभ मिलेगा। मौसम जब भी बदलता है तो टैनिंग और सनबर्न जो है हमेशा हो जाती है और त्वचा जो होती है, स्किन जो होती है, उसकी रंगत भी कम पड़ने लगती है। ऐसे में तुरंत जो है ग्लो पाने के लिए घर पर हम नेचुरल तरीके से कुछ ऐसे फेस पैक तैयार करेंगे जिन्हें लगाकर आपको बहुत लाभ मिलेगा। और वो कौन कौन से फेस पैक है

खत्म हो जाएंगे, टैनिंग हट जाएगी, सनबर्न जैसी जो स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उससे आप राहत पा सकते हैं। अब आपने घर पर वो फेस पैक कैसे बनाना है जानेंगे इस गीत के बाद। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम जानने का सफर। तो आइए अब बात करते हैं उस फेस पैक की जो आप घर पर इजी तरीके से बना सकते हैं। आपको आधा खीरा लेना है, आधा टमाटर लेना है, उसमें आपने 4 से 5 बूंद जो है नींबू का रस मिलाना है, 1 चम्मच गुलाब जल और 2 चम्मच उसमें मुल्तानी मिट्टी आपने उसमें डालनी है। अब फेस पैक किस तरह बनाना है, सबसे पहले आधा खीरा और आधा टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन्हें मिक्सी जार में डालकर अच्छी तरह से पीस लें और एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें। इसके बाद इसमें नींबू का रस, गुलाब जल और मुल्तानी मिट्टी मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें। जितने इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने डालना है ताकि एक गाढ़ा और मुलायम पेस्ट तैयार हो जाए। अगर पेस्ट ज्यादा गाढ़ा लगे तो उसमें आप थोड़ा सा गुलाब जल और ऐड कर सकते हैं। अब इसको लगाने का क्या तरीका है जानेंगे इस गीत के बाद। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

0: तो आइए अब जानते हैं कि किस तरीके से आपने इसको लगाना है। चेहरे को सबसे पहले साफ पानी या फिर माइल्ड फेस वॉश से अच्छे से आप वॉश कर लीजिए ताकि गंदगी जो है सारी निकल जाए। अब तैयार फेस पैक को चेहरे और गर्दन पर एक तरीके से पूरा अप्लाई कर लीजिए। आंखों के आसपास की जगह को आप छोड़ देना। इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक सूखने दें, फिर आप ठंडे पानी से इसको धीरे धीरे मसाज करते हुए धो लें। और याद रखें उसमें आपने फेस वॉश यूज नहीं करना है। इस फेस पैक को जो है हफ्ते में वीकली आप 2 बार इस्तेमाल जरूर करें। अब इसके फायदे क्या है? इसमें आपको नेचुरल ग्लो मिलेगा, आपकी स्किन को ठंडक मिलेगी। ऑयली स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें मुल्तानी मिट्टी है। दोस्तों, टमाटर और नींबू जो है हमारी स्किन की रंगत को निखारने और टैनिंग को कम करने में काफी मदद करता है। ऐसे में ये फेस पैक हमारी स्किन को नेचुरल और इंस्टेंट ग्लो देने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। हमारे पूरी स्किन को ठंडक पहुंचाता है और जो ऑयली स्किन वाले हैं उनके लिए तो ये रामबाण तरीका है अपने फेस को बहुत ही हेल्दी बनाने का। तो अगर आप इस तरीके से ये लगाएंगे, घर पर ये उपटन तैयार करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं ये गीत। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।
1: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं?

वेलकम बैक है जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी में प्रोग्राम जानने का सफर। दोस्तों, आपको मैं ये घर पर ही बने नेचुरल तरीकों वाले जो फेस पैक्स है या फिर कुछ भी मैं आप लोगों को टिप्स बताती हूँ, वो नेचुरल ही क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए दोस्तों, जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, जो मार्केट से बने केमिकल्स के साथ बने हुए क्रीम्स होते हैं, वो जरूर आपको एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट जरूर देते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं, वो आपकी स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, वो स्किन पहले से भी बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। तो इसीलिए नेचुरल कोशिश किया कीजिए, नेचुरल रेमेडीज को ही आप अपने स्किन में लगाएं, क्योंकि स्किन जो है बहुत सेंसिटिव होती है, और अगर इसमें बहुत हार्ड और हार्श केमिकल्स लगाए जाए तो हमारी स्किन एक पल के लिए बहुत ग्लोइंग और बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन परमानेंट खराब हो जाती है, क्योंकि इसकी जो ऊपर की लेयर है वो बहुत ज्यादा डैमेज और पतली हो जाती है, जिससे आपके स्किन में रेड मार्क्स नजर आते हैं, आपकी नर्व्स दिखने लगती है, स्किन बहुत पतली हो जाती है, फिर उसका कोई इलाज नहीं होता। इसीलिए घर पर बने उपटन को या घर पे बने फेस पैक्स को घर पे बने ही इंग्रेडिएंट्स के साथ अगर आप लगाते हैं तो उसमें रिजल्ट जरूर देर से मिलता है, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन और हेल्दी सॉल्यूशन होता है। तो इसीलिए आप अपने त्वचा को साफ करने के लिए, मुलायम करने के लिए, अच्छी स्किन, हेल्दी स्किन पाने के लिए कोशिश करें कि घर के इंग्रेडिएंट्स ही यूज करें, घर की रेमेडीज को ही आप जरूर लगाएं। दादा दादी के टाइम पर ना, दादियों के टाइम पे दादी जो है हमें यही उपटन लगाया करती थी, जिसमें बेसन, चावल का आटा, शहद, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, इन्हीं सब इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर, गुलाब जलों को मिलाकर ही हमारे स्किन में लगाया जाता था मलाई। पहले टाइम पे क्रीम्स नहीं होती थी, मलाई से हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते थे, नारियल तेल से करते थे, सरसों के तेल से करते थे, लेकिन तभी से अगर आप अपनी दादा दादी के टाइम की फेस देखेंगे ना, स्किन देखेंगे, वो बहुत हेल्दी, आज तक हेल्दी है, लेकिन वो पहले की चीजें, रेमेडीज ही यूज किया करते थे। ऐसे ही हम भी इन सब चीजों को यूज करके अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं। तो आइए इसके साथ हेल्दी हेल्दी गीत सुनते हैं रेडियो बिस्वानी में।

इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सभी ने जानी है होम रेमेडी फेस पैक, किस तरह आप ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं घर के ही इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर। कोशिश करें कि यही इंग्रेडिएंट्स हमेशा लाइफ टाइम के लिए आप अपने लाइफ में बांध के रखें, ताकि हमें बाहर की महंगी महंगी क्रीम्स और हार्श और बहुत ही केमिकल्स वाली क्रीम्स लगानी ना पड़े, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो बहुत सेंसिटिव है और बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है हमारे लिए। जी हाँ, तो इसी के साथ जी प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होंगे आप सभी के बीच लेके और भी बहुत प्यारा प्यारा टॉपिक जानने के सफर प्रोग्राम में। अभी के लिए दीजिए अपने दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन को इजाजत, और सुनते रहिए, बने रहिए रेडियो ब्रिस्वानी में।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी

रेडियो प्रस्वानी 1701 है, हमारी सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ट्रंप के दौरे से पहले चीन ने खींची लक्ष्मण रेखा, चार मुद्दों पर नहीं होगी चर्चा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर हैं। वहीं इस यात्रा से पहले यूएस में मौजूद चीनी दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने चीन अमेरिका संबंधों के प्रमुख मुद्दों पर अपनी स्थिति दोहराई। इसके साथ ही चार रेड लाइंस तय की हैं, जिन्हें इस सप्ताह होने वाले सुपर पावर शिखर सम्मेलन के दौरान चुनौती नहीं देने की बात कही गई है। यूएस में मौजूद चीनी दूतावास के अनुसार इसमें ताइवान पर चीन की स्थिति और उसके विकास के अधिकार सहित दो और शर्तें भी शामिल हैं। अमेरिका में विदेशी छात्रों के लिए नई मुसीबत, ओपीटी वीजा घोटाले का खुलासा। अमेरिका के इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट और यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वीजा प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का खुलासा किया है। पूरे अमेरिका में हजारों विदेशी छात्रों और संदिग्ध नियोक्ता इस घोटाले में शामिल पाए गए हैं। आईसीए के एक्टिंग डायरेक्टर टॉड लायंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जांचकर्ताओं को खाली दफ्तर, बंद इमारतें और नकली काम की जगह मिली हैं। ये कंपनियां सैकड़ों विदेशी छात्रों को नौकरी देने का दावा करती थीं, जबकि उनका कोई असली कारोबार नहीं था। दुनिया भर में घटी ट्रंप की साख, चीन रूस निकले आगे। एक नए अंतर्राष्ट्रीय सर्वे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका की वैश्विक साख में लगातार दूसरे साल गिरावट दर्ज की है। अमेरिका की छवि अब रूस और चीन दोनों से पीछे खिसक गई है। इस सर्वे में ट्रंप की विदेश नीति, टैरिफ और सैन्य कार्रवाइयों को लेकर दुनिया भर में बढ़ती बेचैनी की बात का जिक्र किया गया है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। एनटीए से हटाया जाए न्यायिक निगरानी में हो परीक्षा, नीट यूजी 2026 रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने नीट यूजी 2026 के आयोजन में इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की प्रणालीगत विफलता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस याचिका में एनटीए को बदलने या उसका बुनियादी ढांचा पुनर्गठित करने और न्यायिक निगरानी में नीट यूजी 2026 की परीक्षा दोबारा आयोजित करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। अजरबैजान में छुपा ड्रग सरगना प्रवदीप सिंह गिरफ्तार, लाया गया भारत। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि हाई प्रोफाइल प्रवदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत वापस लाया गया है। ये एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थों की जांच में एक महत्वपूर्ण संभलता है। सिंह, जिसके खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी था, उसको दिल्ली पुलिस की 3 सदस्यीय विशेष टीम भारत वापस लाई और वो 13 मई 2026 को राजधानी पहुंचा। अब तक की प्रमुख खबरें, अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: उम्मीद है ये आपको जगा दिया होगा ये गीत दोस्तों, शमी कपूर। और कौन?
1: वाज इट फ्रॉम
0: तीसरी मंजिल?
1: हाँ, तीसरी मंजिल। आई एम ट्राइंग टू थिंक हु वाज द एक्ट्रेस।
0: देखिए दोस्तों, सुबह सुबह कुछ थोड़ा इसे बातें कर लेते हैं। आज हम थोड़ा सा कुछ मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। जब हम गुस्से में होते हैं, जब दिमाग हमारा सही नहीं रहता है, जब इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा या इमोशनल हो जाता है, तो क्या होता है? तो जो बॉडी एक इमरजेंसी मोड में चली जाती है, यू नो दैट, दिल तेज धड़कने लगता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, सांस तेज हो जाती है, और दिमाग का जो बैलेंस है ना, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि गुस्सा जैसे कि एक इंसान उस समय पागल हो जाता है ना। इसीलिए गुस्सा में लिए गए जो फैसले हम करते हैं ना, ये अक्सर ये गलत हो जाते हैं। शांत रहना और कुछ देर चुप रहकर गहरी सांस लेना कभी कभी सबसे बड़ी क्या बोलते हैं दवा होती है जब आप गुस्से में होते हैं। और इससे और क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, आपका चेस्ट में पेन हो सकता है, सडन वीकनेस और नमनेस हो सकता है, आपका ट्रबल हो रख सकता है बात करने में, कुछ फेंटिंग की तरह होने लगते हैं लोग, सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और कंफ्यूजन, क्योंकि योर ब्लड इज रेसिंग ना, प्रेशर इज गोइंग वेरी हाई, और पैनिक अटैक्स हो सकता है, सीवियर एंग्जाइटी, डेंजरस राइज इन ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स और स्ट्रोक रिस्क इन वल्नरेबल पीपल। तो गुस्सा मत करिए दोस्तों, और लेकिन आई नो इजियर सेड देन डन।
1: It's hard to, sometimes it's hard to control that. And the thing is, you got to remember, once you say something, you can't take it back.
0: Yeah.
1: You just can't.
0: Emotionally and mentally, anger can also reduce clear thinking. Or कभी काल इसके कारण हम बहुत ऐसे बातें कर देते हैं, कह देते हैं, जैसे भी आपने कहा, and you say when you are in a right mind, जब हो जाते हैं तो अरे काश ये बात हम नहीं कही, बात नहीं कहती, तो ये बात नहीं कहते हम, और कह चुके हैं, लेकिन तीर तो निकल गया है दोस्तों, और बहुत दिन तक इसका हर्ट रहता है ना। इट ऑल्सो कॉजेस क्राइंग, शाउटिंग और साइलेंस, और कभी कभी क्या होता है, ब्रिंग्स बैक ओल्ड हर्ट और ट्रॉमा।
1: That's true.
0: It leads to headaches, chest tightness, or stomach upset. तो गुस्सा बहुत अच्छा चीज नहीं है, you know. और कभी इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए, और क्या बताऊं मैं, हो जाता है, सबसे होता है, लेकिन कभी कभी हम स्टेटमेंट बिना कुछ कहे हुए भी हम अपना स्टेटमेंट बना देते हैं ना, यू नो, इफ यू नो व्हाट आई मीन। दोस्तों चुप रहना, आई थिंक कहते हैं कि चुप रहना, अगर लड़ाई में चुप हो जाए आप, उससे बड़ा मार तो कुछ हो नहीं सकता है, यू नो, ऐसे कहते हैं, आई डोंट नो, लेकिन क्या गुस्सा करना दोस्तों, बट दिस पार्ट ऑफ अस, इजंट इट? एनीवे, ओके, आगे बढ़ते हैं।
1: You got your heart racing when you're angry. You got your blood pressure shooting up.

0: pumping like it's going to explode any minute.
1: Yeah.
0: You know, it's not good. It's not healthy.
1: Yep. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और I am looking for something.
0: Are you?
1: लिखता मिलता कि नहीं. अच्छा ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नंबर है 04-3003-1701 या 3279-1701 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं. ठीक है.
2: Tak tak tunna na din din na tak tak tunna na din din na tak tak tunna.

कुछ प्यारे प्यारे गीत आप सुन रहे हैं दोस्तों, आज थर्सडे कुछ पुराने गीत भी हम लेकर आ रहे हैं आज आपके लिए। उम्मीद है आप लोग पसंद कर रहे होंगे। और भूलने से पहले आपको बतला दूं, इस कार्यक्रम के बाद में आप हो जाएंगे सताक्षी के साथ, और फिर 11 बजे से अपना पंजाबी प्रोग्राम संदेश के साथ, और फिर 3 बजे से आप हो जाएंगे निविया के साथ। देखिए दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा लम्हे या ऐसा समय आते हैं जब हम हर तरफ अंधेरा से महसूस करने लगते हैं और ऐसा लगता है कि कोई रास्ता और है ही नहीं, है कि नहीं। मुश्किलें कभी खत्म नहीं होगी, हम ऐसे फील करते हैं कि ये कभी खत्म नहीं होगी, है। तो चलिए, अगर आज अगर आप भी इसी परेशानी में या इसमें हैं उदासी में, सो देखिए अगर इस दौर से आप गुजर रहे हैं दोस्तों, तो बस इतना याद रखिएगा, जिंदगी रुकती नहीं, ओके। हर अंधेरा एक दिन क्या होता है, रोशनी को रास्ता देता है दोस्तों, देता कि नहीं। तो चलो एक ऐसा गीत आपके लिए, उम्मीद है आपको अच्छा लगे।

0: Kishore Kumar, imagine he's versatile singer.
1: Very versatile.
0: Yeah. Love that number. I mean, I know it's...
1: No, it's a beautiful song.
0: It's a beautiful, inspirational song. There is always light at the end of the tunnel,
1: yeah.
0: Isn't it?
1: Yes.
0: So, dosto, agar aisa kuch hai, it's okay. You'll pass through it. Lekin be, what you call it?
1: Positive.
0: Positive, okay. Positive rahiye aur sab kuch theek hoga. Jo kuch ho raha hai, wo theek hi ho raha hai.
1: Yes.
0: Right?
1: Yes.
0: और जो कुछ हुआ भी आपके साथ वो ठीक ही हो रहा होगा दोस्तों, चाहे अभी बुरा लग रहा होगा लेकिन बाद में आप सोचेंगे यार बड़ा अच्छा हुआ हुआ है कि नहीं?
1: You know whatever happens is meant to happen at that time.
0: That's right.
1: You know that? Crazy, isn't it?
0: That is true. Yeah. Okay, ये तो शायद हमारे गीता सार भी है ना? गीता में भी तो कहा गया है ठीक है.
1: That's true.
0: ओके ओके, चलो एक और गीत हो जाए और फिर हम वापस आते हैं. आई एम प्लेइंग वन, देन यू कैन प्ले द नेक्स्ट वन.
1: ओके.

0: Emma!
1: Beautiful song. I don't know why it had to end like that, but anyway, that's a part of the movie, right? Okay. Chalia, it's your turn.
2: Oh.
1: Are you playing something?
2: I will.
1: Okay.
2: One of my favorite songs. Chalia, it's okay.
1: साथ-साथ में जितने लोग अभी रेडियो ऑन किए हैं उनका भी हम
2: स्वागत
1: करते हैं और जो लोग इंटरनेट पर आ गए हैं चलो आपका स्वागत.

0: और दोस्तों, क्या क्या आप जानते हैं कि साइंस ने, यानी साइंटिस्ट ने कुछ पाया है जो आपका, जो क्या बोलते हैं हम, क्या जो स्क्रैच करते हैं, खारिश,
1: So if you have an
0: हाँ,
1: itch,
0: उसको रोक सकते हैं.
1: so if you have an itch, you can
0: या
1: stop it.
0: ये दे कैन स्टॉप इट. इज समथिंग दे कम अप विद डूइंग समथिंग टू स्टॉप योर
1: Okay.
0: स्क्रैचिंग. इट्स अ
1: Are you going to give
0: सिकनेस.
1: us more info? No.
0: नो, दैट्स ऑल आई नो. Oh,
1: Okay, that was
0: what a
1: helpful.
0: good.
1: That was so helpful. First up in the morning.
0: चलिए दोस्तों, कभी हम सीरियस हो जाते हैं, कभी हम क्या से क्या हो जाते हैं. क्या से क्या हो गया.
1: क्या से क्या हो गया.
0: ओके, देखिए दोस्तों, कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते ना, वो दिल की धड़कन बन जाते हैं. और हम जब बात हो, जी हाँ, जब बात हो रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी, यानी हमारे प्यारे रफ़ी साहब की, तो हर लफ्ज़ में एक अलग एहसास होता है. उनकी जो है ना, तुम सामने बैठी रहो, हैव यू हर्ड दिस सॉन्ग, तुम सामने बैठी रहो, क्या खूबसूरत ख्याल है. मोहब्बत में कभी कभी इंसान को कुछ और नहीं चाहिए होता है, ना दौलत ना दुनिया, बस वो एक शख्स सामने बैठा रहे और दिल प्यार के गीत गाते रहे. दिस इज अ लवली सॉन्ग, आई एम टेलिंग यू. इस गाने में एक सुकून है, एक शराफत भरा प्यार, जहां नजरों में इज्जत है, आवाज में मोहब्बत है और दिल में सिर्फ एक ही तमन्ना, तुम सामने बैठी रहो, मैं गीत गाऊं प्यार के. ठीक है दोस्तों, तो चले इस गीत को. जी हाँ दोस्तों, आज के दौर में तो क्या बताऊं मैं, कोई बात नहीं. इसीलिए देखिए, पुराने जो गाने हमेशा दिल के करीब रहते हैं कि नहीं. तो चलिए इस गीत को सुनते हैं दोस्तों.

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bin Coin. Save, spend or donate your Bin Coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
2: देखिए दोस्तों, ये पैसा फेंको मत, आप बचा कर रखो, इसको ले जाओ और बच्चों के लिए आप उसको एक अच्छा सा सेविंग बना सकते हो, ठीक है? सो डोंट थ्रो देम अवे. थोड़ा काम कुछ नहीं है इसमें, आपके एक्सरसाइज होगा. मूवमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कहते हैं कि हमारे इस दुनिया में यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा बैठते हैं और जो ये बैठना होता है ये बीमारी का घर होता है दोस्तों. हमेशा कीप ऑन मूविंग, मूव इट, मूव इट, मूव इट, यू नो दैट सॉन्ग.
3: I like to move it.
2: Yeah. तो मूव इट करते रहिए दोस्तों, नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा आगे चलकर.
3: मूव इट और लूज इट.
2: ठीक है. अभी एक बीच में थोड़ा लूज इट हो गया था लेकिन अब मूव इट हो रहा है. ओके चलिए.
3: एक्सक्यूज मी.

0: हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। अच्छा आप बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो हमेशा गाना गाते हैं?
1: आई डू।
0: अगर आप लोग ज्यादा गाना गाते हैं तो आप लोग प्यार करते हैं, यही होता है।
1: आई नेवर न्यू दैट।
0: यू नेवर न्यू दैट। जिंदगी भाई बड़ी अजीब चीज है जिंदगी, और जिंदगी में हर इंसान को खुश रहने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। कभी कभी सिर्फ एक सुकून भरी नींद अगर लग जाए, आजकल तो नींद भी बहुत मुश्किल है, नामुमकिन हो जाता है कभी कभी, या दो प्यारे लफ्ज और अपनों को साथ ही काफी होता है, लेकिन नहीं जिंदगी सिंपल रखना चाहिए हमको। और जिंदगी में सभी तो प्यार किया करते हैं, वो गाना नहीं।
1: Okay, I had a request.
0: Yeah, what was the request?
1: So, Bhaiji, the song, I hope this is the correct one. I have it. Hafiz Bhai, Salam. He asked me to play Rim Jim Ke Geet. So, hopefully, this is the correct one.
2: I might be singing.

0: जी हाँ दोस्तों, मेरे ख्याल में तो बहुत प्यारे प्यारे गीत है आज आप सुन रहे हैं। होपफुली आपको भी ऐसे महसूस हो रहा होगा दोस्तों, ठीक है। Well, Amita, you know what kind of song I like mostly, right?
1: Yeah, like the oldest free, flowing, go, go, go
0: yeah,
1: kind of song.
0: You got it, yeah.
1: Why?
0: I like this kind of song.
1: Yeah.
0: देखिए, कुछ लोग जिंदगी में बहुत प्लान करके जीते हैं, हर कदम पर प्लान।
1: Oh yeah, yeah, yeah.
0: Right? ऐसे कि जैसे कि वो कभी मरेंगे नहीं, प्लान करके, right? और कुछ लोग बस मुस्कुराते हुए सफर पर निकल पड़ते हैं। उनका ये नहीं होता है कि हमारा मंजिल कैसा होगा, मंजिल के बात नहीं, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं उसका मजा ले रहे हैं। है कि नहीं? दैट्स व्हाई लाइक दिस फ्रीडम काइंड ऑफ थिंग।
1: तो ऐसे में इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी।
0: जर्नी व्हाइल यू आर टेकिंग द जर्नी इज द मोस्ट। यू हिट द नेल ऑन द हेड। तो एक ऐसा गीत मैं बजाने जा रहा हूँ दोस्तों, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। ये भी कुछ ऐसा ही सोच का गीत है जो मुझे भी बहुत पसंद है, राइट? और शायद आपको भी ये गाना पसंद आ जाए दोस्तों।

दोस्तों बात भी सही है, कभी कभी रास्ते हम नहीं चुनते, रास्ते हमें चुन लेते हैं, है कि नहीं? खैर चलो, ऑल रोड्स लीड टू हेवन, वाओ, किसी ने कहा, भेजा मेरे पास, मेरी मंजिल तो हेवन है। क्या बात है?

देखिए दोस्तों, बहुत ही जोर से समय भाग रहा है। इसका मतलब यही है कि शायद मैं भी आज बहुत एंजॉय कर रहा हूँ जो गाने हैं। अभी जो गाना आपने सुना, इसे अमिता जी ने प्रेजेंट किया आपके लिए, बहुत प्यारा गीत। ये गाना मुझे भी बहुत पसंद था, इवन थ्रू माय टीनेज लाइफ। आई डोंट नो व्हाई। और एक गाना ऐसा है दोस्तों, और ये जो अगला जो गीत है ये रफ़ी साहब का गाया हुआ है, और ये गाया गया है शमी कपूर के लिए, और इसमें राज श्री भी है। और कौन सा गीत है, चलो सुनते हैं दोस्तों।

और दोस्तों, इन प्यारों गीतों के साथ हम मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। अभी दो गीत और हैं। और नहीं, चलो अच्छा।

0: चलो दोस्तों, वादा करते हैं कि हम हमेशा पास रहेंगे, राइट? और आप तो बिजवानी के साथ जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं, वी हैव एटलीस्ट समथिंग इन कॉमन,
1: यस,
0: राइट? लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रोग्राम में साथ दिया, बहुत अच्छा लगा दोस्तों. और चलिए आज का जो आखिरी नगमा है,
1: हाँ.
0: और
1: Have a beautiful weekend, everybody. Yes. And we will see you I will see you next week. Namaste.
0: Why you say you will see? I will see. Okay, maybe Sunday I will do a program.
1: Yes.
0: Aur kal bhulna mat, kal Neelam ke saath aap rahenge. Theek hai? Tomorrow is Friday.
1: Already?
0: Oh my God. Kya rakhega dosto? Namaste.

भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। नए सपनों को सजाए हुए, नई उड़ानों को संजोए हुए, अपने पंखों को फैलाए हुए, आसमान में उड़ते हुए एक बार फिर से आ गई है सताक्षी आपके पास। जी हाँ, ये सफर है आपका अपना इट हैपेंस, आपका अपना ब्रेकफास्ट शो। ब्रेकफास्ट के टाइम पर, ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर हमारी बहुत सारी बातें होती हैं, और वो सारी बातें जो हैं उस आज भी आपसे करूंगी। आज भी आपके सपनों, आपके अपनों और सबसे इम्पोर्टेंट तो आप पर बात करूंगी। आई होप कि आप भी रेडी हैं दोस्त। तो चलिए, जब आप भी राजी हम भी राजी तो भला क्या करेगा काजी। शुरुआत करते हैं इट हैपेंस की। गुड मॉर्निंग आप सबको, बताइए मुझे कैसे हैं आप सब। हमारे रेडियो प्रस्थानी के फेसबुक पेज पर फटाफट से आइए और हमें बताइए कि कैसे हैं आप। मैं आपके लिए प्ले करती हूँ आपका ये मॉर्निंग ट्रैक K+2 रेडियो प्रस्थानी 1701 AM। मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर। दोस्तों सताक्षी आपके साथ है, आपको कुछ बेहतरीन और लाजवाब गाने सुनवा रही है। ये गाने तो अभी शुरुआत है, बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनसे तो बात कर रहे हैं जिनके लिए आज का दिन स्पेशल है। सो जिनका आज हैप्पी बर्थडे, उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन। आज का दिन बहुत ही खास आपके लिए गुजरे, आपके लिए रहे, आपके लिए ढेर सारे विशेज आ जाए, ढेर सारे गिफ्ट आए और बहुत ही खूबसूरत दिन आज का रहे, ये हमारी विश है। वैसे सिर्फ ना आज का दिन बल्कि हमेशा आपकी जिंदगी जो है वो खुशियों से भरी रहे। जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, शादी के सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत लकी हैं जो एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का प्यार आपको मिला है। ये प्यार, ये साथ हमेशा यूं ही बनाए रखिए, कदम से कदम एक दूसरे के मिलाकर जिंदगी की राहों पर चलते रहिए और जिंदगी को आसान बनाते रहिए। जिनके लिए भी आज का दिन स्पेशल और खास है, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। अपने सपनों की उड़ान भरते रहिए और जिंदगी जो है वो आपको जरूर आपकी मंजिल पर पहुंचाएगी। आपके सभी ख्वाब मुकम्मल हों इसी विश के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। ये गाना जो अगला डेडिकेट किया है मैंने आपको, उसे सुनवाती हूँ आपको। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्थानी 1701 एफएम। सताक्षी के साथ सुनते रहिए, इट हैपेंस।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से आपको रेडियो प्रस्थानी पर आपने सताक्षी के साथ आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। और देखिए, सुबह की शुरुआत जो है वो एक मुस्कुराहट से की है आपने आज, है ना। मैं कहती हूँ कि ये मुस्कुराहट जो है ये रोज यूं ही बरकरार रखिए। अच्छा, सुबह की शुरुआत जो है वो मुस्कुराहट के साथ तब होती है जब आप आंखें खोलें और आपके अपने आपके आसपास हों। जरा सोचकर देखिए, अगर आप किसी दिन आंखें खोलें और आपके अपने आसपास ना मिले, आपको कहीं बाहर ही चले जाएं, तो कैसा लगेगा? मतलब एकदम से आप चौंक जाएंगे, भौचक्के हो जाएंगे, तो ढूंढने लगेंगे उनको, है ना। तो ये वैल्यू है हमारी जिंदगी में, हमारे अपनों की, हमारी फैमिली की, उन लोगों की जो हमसे बेहद प्यार करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि जितनी मोहब्बत उन्हें हमसे है, उतनी मोहब्बत हम भी उनको दें। क्योंकि ये जो मोहब्बत है ये हम रियलाइज नहीं करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर अब वो आपसे दूर चले जाएं या आपको सुबह दिखाई ना दे, तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाएगी, उसका जो रंग है वो फीका पड़ जाएगा। इस एहसास को टाइम रहते क्यों नहीं पहचान लेते कि उनके दूर जाने का इंतजार करना, राइट। सो अपनों की वैल्यू को पहचानिए। आपकी अपने आपकी सबसे बड़ी दौलत है, उससे बड़ी दौलत और कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए वो प्यार, वो परवाह जो आप चाहते हैं कि वो आपको दें, वो उनके लिए भी बनाए रखिए। सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रह्मानी पर। सताक्षी कहती है आपको एक बार फिर से गुड वाली मॉर्निंग।

पर जब आप ये गाना सुन रहे थे तो मुझे अपने बचपन की एक बात याद आ गई और मुझे हंसी आ गई। हाँ, जब मैं छोटी थी तो पता है मैं क्या करती थी? पहले मैं सपना देखा करती थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी, फिर मैं सपना देखा करती थी मैं लॉयर बनूंगी, और फिर जब बड़ी हुई तो ये सपने मेरे आइडल्स पर जाके टिक गए कि मैं इसकी तरह बनूंगी, मैं उसकी तरह बनूंगी। लेकिन अब जाके जिंदगी का एक फंडा समझ में आया है, सोचा आपके साथ उसे भी शेयर कर लूं। पता है, हम ना हमेशा दूसरों की तरह बनना चाहते हैं, उसकी तरह बनेंगे, इसकी तरह बनेंगे, ये मेरा फेवरेट हीरो है, वो मेरा आइडल है, ये बहुत सारी जो चीजें हैं ये हम अपने लिए सेट करके रखते हैं। क्यों नहीं हम अपनी तरह बनते हैं? दूसरे की तरह बनने के चक्कर में हम अक्सर खुद से दूर नहीं होते जाते हैं? हाँ, तो हम क्यों नहीं कहते कि हम खुद की तरह बनेंगे, खुद में परफेक्ट बनेंगे, खुद में जो कमी है उसे तराशेंगे। हम क्यों नहीं खुद के लिए एक लाइन डिसाइड करते हैं? हम क्यों हमेशा दूसरे की लाइन में घुसने की कोशिश करते हैं? क्यों? बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी आपको एक दिन आपकी तरह बनाकर मानती है। आप कितना भी कोशिश कर लें कि आप दूसरों की तरह बनेंगे, सोचिएगा मेरी बात को और सुनते रहिएगा इट हैपेंस सिर्फ और सिर्फ रेडियो प्रस्थान पर। Authentic, original, and better than our rivals.

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bin Coin. Save, spend or donate your Bin Coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
2: बिस्वानी 1701 AM सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। अभी हम आ गए हैं गानों की हैट्रिक में। जी हाँ, चलिए मिलकर लगाते हैं गानों की हैट्रिक। तीन बैक टू बैक ट्रैक्स एक बार फिर से आपके लिए सताक्षी लेकर आई है और आज का ये पहला ट्रैक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

गानों की हैट्रिक आप एंजॉय कर रहे हैं। हमारे 3 बैक टू बैक ट्रैक्स का ये सफर है जिसे आप हर रोज सुनते हैं रेडियो प्रसानी पर। इट हैपेंस। आइए इस सेगमेंट में अभी ये अगला ट्रैक एंजॉय करते हैं।

गानों की हैट्रिक में हमारे तीन बैक टू बैक ट्रैक्स का ये लास्ट ट्रैक, एंजॉय कीजिए इसे और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस। बहुत सारी बातें हैं जो गानों की हैट्रिक के बाद आपसे होने वाली हैं, सो तैयार रहिए उसके लिए और इस अगले ट्रैक के साथ आइए बढ़ते हैं सफर में आगे।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

रेडियो प्रस्वानी 1701 AM सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। और जब सुबह होती है तो सुबह एक पॉजिटिव एनर्जी से हम भरे होते हैं। एक तो रात भर की थकान पूरी उतर चुकी होती है ना, तो आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है। दूसरे मॉर्निंग के वक्त, सुबह के वक्त सबसे कम थॉट्स आपके माइंड में होते हैं, तो वो नेगेटिव थॉट्स और वो सब जो है ना कचरे वाली बातें होती हैं वो जल्दी दिमाग में आती नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि आप एक्सरसाइज करते हैं, आप मेडिटेशन अगर करते हैं तो आपका माइंड कूल डाउन भी रहता है। लेकिन होता क्या है, दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, आप दिन में अपनी रूटीन में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपका माइंड वापस डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और वापस से आप वही सारी नेगेटिविटी में डूबते चले जाते हैं। आपकी एनर्जी जो है, जिसे आपने बूस्टअप किया था एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से, अच्छी अच्छी बातों से, इट हैपेंस से, वो सारी एनर्जी जो है वो डाउन होने लगती है। तो भैया, इसको एक जो लेवल है वो बरकरार कैसे रखा जाए, यानी हमारी सुबह की एनर्जी हमारी शाम तक की एनर्जी के बराबर रहे, एक सी एनर्जी हमें पूरे दिन मिले, भले ही कितना भी हेडक हो, कितना भी काम हो, लेकिन हम बूस्टअप रहें। क्या कर सकते हैं इसके लिए? इसके लिए आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस दे सकते हैं। जी हाँ, अगर आप सुबह सोच के निकलें कि आज तो मुझे पूरे दिन पॉजिटिव रहना है, आज मुझे पूरे दिन इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना है, आज जितना मैं खुश सुबह हूँ मुझे शाम तक उतना ही खुश रहना है, अगर बार बार आप ये खुद को याद दिलाते रहें तो जरा करके देखिए, आपकी एनर्जी मैं गारंटी से कहती हूँ कि कम नहीं होगी और आप शायद जितने खुश सुबह हैं उससे कहीं ज्यादा खुश आप शाम को रहेंगे और शाम को बहुत अच्छा फील करेंगे और एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ खुद को फील करेंगे। ट्राई करके देख लीजिए और सुनते रहिए मेरे साथ इट हैपेंस, सिर्फ और सिर्फ रेडियो प्रस्वानी पर।